ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी

0: क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैश्रम ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप और हम मिलकर सुनते हैं रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की एपिसोड संख्या 16। स्वर हैं ए हरिहरन और साथियों के। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। स्वर थे ए हरिहरन और साथियों के संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आज आपने एपिसोड संख्या 16 सुनी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। सुविचार। तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो न अतिमानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारतः। अर्थात तेजस्विता क्षमाशीलता अदम्य धैर्य आचरण की पवित्रता राष्ट्रहित के प्रति निष्कपट भाव और अहंकार रहित व्यक्तित्व, ये सभी गुण देवी संपदा को प्राप्त व्यक्तित्व के लक्षण कहे गए हैं। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। श्रोताओं, आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम आपको हिंदी फिल्मों से ली गई कुछ चुनिंदा भक्ति रचनाएं सुनवाया करते हैं। आइए आरंभ करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

ईश्वर पर पूरा भरोसा करके जब चलते हैं तो ईश्वर की आवाज़ हमें हमेशा सुनाई दे सकती है, और वो यही कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, फिर तू दुनिया से सहारा क्यों मांगता है? जिसने तुझे बनाया है वही तेरा रास्ता भी बनाएगा। जब मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ तो तुझे आगे की चिंता क्यों है? दुनिया बदल सकती है पर मेरा साथ कभी नहीं बदलेगा।

निराश मन अगर कुछ भरोसा भगवान में रख कर ये सोचे तो उसे ये आवाज़ सुनाई दे सकती है कि तू गिरता है तो दुनिया हंसती है, पर मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख, तेरी हार भी तुझे जीत मैं बना के दूंगा। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तू ही लोगों में मुझे ढूंढता रहा। जब आंखें बंद करेगा तो महसूस होगा मैं हमेशा यहीं था।

श्रोताओं, आज भक्ति संगीत के कार्यक्रम बंधन में हमने आपको जिन फिल्मी भक्ति रचनाओं के गीत भक्ति रचनाएं सुनवाई, उन फिल्मों के नाम हैं संपूर्ण रामायण, गोपाल कृष्ण, रामलीला, सांझ और सवेरा, नीलकमल, यादें और सुहाग। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं सुरैया की आवाज़ में ये नगमा। कैफी आजमी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद की धुन। फिल्म का नाम शमा।

श्रोताओं, अभी आपने महेंद्र कपूर को सुना। भरत व्यास के बोल थे और सी रामचंद्र की धुन थी। फिल्म का नाम था स्त्री। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए मॉडर्न गर्ल फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गुलशन बाबरा के बोल और तर्ज बनाई है रवि ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: श्रोताओं, अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। फिल्म संगीत आप हमारी इसी सभा में सवेरे 11 बजे फिर से सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं नमस्कार। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने रेडियो दोस्त कपिल के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत में एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार दो भाई कहीं टहल रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब छोटा भाई थोड़ा सा उदास हो गया। उसने रेत पर यह लाइन लिखी कि मेरा भाई बहुत बुरा है। कुछ दिनों बाद फिर दोनों घूमने निकले। छोटा भाई समुद्र में नहाने लगा। अचानक वो डूबने लगा तो बड़े भाई ने उसे बचा लिया। छोटे भाई ने पत्थर पर लिखा कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। इस पर बड़े भाई ने आश्चर्य से पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा था तो तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचाया तो पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? छोटे भाई का जवाब सुनने लायक था। छोटे भाई ने जवाब दिया कि जब हमें कोई अपना दुख दे तो उसे इतनी देर में भूल जाना चाहिए जितनी देर में रेत पर लिखा हुआ ठहरता है, परंतु जब हमारे अपने या कोई भी हमारा भला चाहने वाला हमारे लिए अच्छा करता है, उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। जैसे पत्थर पर लिखा कभी नहीं मिटता। श्रोताओं, अपनों की अच्छाइयाँ याद रखनी होगी, अपने दोस्तों की अच्छाइयाँ हमेशा याद रखनी होगी, उनकी बुराइयों को भूल जाना होगा। यही रिश्ते निभाने का नियम है और ये बदलाव हमें हमारे भीतर लाना ही होगा। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें बदलाव की। साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में नगमे जो कि बदलते समय के साथ बदलते रहे हैं। जी हाँ, बातें भी बदलते बदलावों की और संगीत के बदलाव के साथ किस तरह से पुराने से लेकर नए गानों तक हम पहुंचे हैं, उस तरह के गाने भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो सुनते रहिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

श्रोताओं, बदलाव कई बार लाजमी हो जाता है। जी हाँ, परिवर्तन बहुत ज़रूरी समझते हैं हम। चेंजेस आदतों, विचारों, समाज की संरचना में बदलाव, वस्तु स्थिति गुण अवस्था में बदलाव, जो कि बेहद ज़रूरी एलिमेंट है। कहा भी गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कई बार हम खुद में भी तो बदलाव चाहते हैं।

श्रोताओं, जीवन का अटल नियम है परिवर्तन। किसी भी विचार, वस्तु, परिस्थिति, दशा का मूल स्वरूप जो है उसे बदल कर भिन्न हो जाना, बदल जाना, ये जीवन का स्वाभाविक नियम है जो कि भौतिकता से व्यक्तिगत विकास तक हर जगह लागू होता है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बदलाव की, और गाने भी आपको वो सुनवा रहे हैं जो कि पुराने समय से लेकर अब तक या 2000 से पहले तक, 90 के दशक तक किस तरह के गानों में संगीत का चेंजेस आया, बोलों में चेंजेस आए।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। दोस्तों, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनकर उड़ जाना, पर यह अवस्था का बदलाव ही कहा जा सकता है। इससे पदार्थ नहीं बनता दूसरा, वहीं किसी चीज के गुण और पहचान का पूरी तरह बदल जाना भी बदलाव का एक प्रकार ही है। जैसे लोहे में जंग लग जाना या फिर दूध का दही में परिवर्तन हो जाना। और फिर अपने भी तो बदलते हैं दोस्तों, दोस्त भी तो बदल जाते हैं। कई साथी जो पहले अलग व्यवहार रखते थे, वो अब हमारे साथ कुछ बदला व्यवहार रखते हैं, उसे भी बदलाव ही कहते हैं। कहा है ना किसी ने कि वक्त बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा,
0: सुनो तो
1: दादा,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

गीत सुनकर श्रोताओं आपके भी चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई होगी। भाई बदलाव ऐसे ही होते हैं, एकदम से कोई हमसे बदलता है या परिस्थिति बदलती है तो हमें एक बार हंसी आ जाती है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आश्चर्य के साथ आने वाली वो हंसी भी बहुत बड़ा बदलाव लाती है। बात चाहे सामाजिक या व्यक्तिगत परिवर्तन की करें तो विचारों, आदतों और समाज के बदलाव भी हम जीवन में देखते ही हैं। जैसे दिन के बाद रात और मौसम के बाद मौसम बदलते हैं, लोग भी बदलते रहते हैं और बदलना लाजमी भी है। समय के साथ साथ संगीत के सुर भी किस तरह से बदले, वो भी आप सुनते जाइए। कुछ बातें, कुछ गीत, कार्यक्रम खास आपके लिए लेकर आते हैं हम हमेशा 7 बजे। आप सुना करते हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर।

श्रोताओं, ये भी बात पुख्ता है कि वक्त के साथ खुद में और खुद के काम करने के तरीकों में बदलाव नहीं करने से एक ठहराव सा जिंदगी में आ जाता है। जीवन उबाऊ और नीरस लगने लगता है। काम करने में भी उस वक्त दिल कहाँ लगता है भाई, जब नीरस होंगे तो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ऐसे वातावरण में तो बदलाव यहाँ पर ज़रूरी भी हो जाते हैं। समय रहते बदलाव, या यूं कहें कि इनोवेशंस को अपना लेने में बुराई कहाँ है।

दोस्तों, बदलाव ऐसे होने चाहिए जो किसी के साथ धोखा ना करे। जी हाँ, बदलाव एकदम से लाके हम किसी के साथ धोखा कर दें, दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, तो फिर बहुत बुरा काम हो जाएगा। रंगों से डर नहीं लगता, रंग बदलने वाले लोगों से डर लगता है। ये उस वक्त सच हो सकता है, ऐसे समय में जब किसी को हमारी बेहद खास ज़रूरत है, उस वक्त हमें नहीं बदलना चाहिए। बाकी जीवन में कई तरह के बदलाव लाजमी हैं और करने भी चाहिए। बातें बदलाव की चल रही हों और विद्वानों के कोटेशन की बात ना हो तो सही नहीं होगा। महात्मा गांधी के अनुसार बदलाव पर उन्होंने जो बात कही थी वो ये है कि आप जो भी बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव खुद बने। तो रूमी ने कहा था, कल मैं चालाक था इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह जीवन की, विज्ञान की, या समाज की, देश की, दुनिया की, ये बदलते रहने की प्रक्रिया निरंतर जारी भी है और जारी रहनी भी ज़रूरी है।

दोस्तों, ज़िंदगी में खुशियाँ और कुछ अलग अचीव करने के लिए वाकई दमदार बदलाव बेहद ज़रूरी हैं। खुद में, खुद के क्रियाकलापों में बदलाव करके पॉजिटिव रूप से हम जीवन को नीरस और बोझिल होने के बजाय खुशियों भरा और रोमांच से भरा हुआ बना सकते हैं। सभी लोग अपनी एक दिनचर्या से गुजरते हैं, हर दिन हर पल। अध्ययन में लगे स्टूडेंट्स हों, पेशेवर व्यक्ति हों या फिर गृहिणी, सभी के पास कुछ न कुछ काम रहता है। वे सभी नए इनोवेशन के साथ अपने काम को कर सकते हैं। अस्सी के दौर से निकलकर हम 90 तक पहुंच गए हैं दोस्तों। फिल्मों के ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस गाने के साथ।

तो दोस्तों, अब और नीरसता के समय से बचने के लिए साधारण से परिवर्तन जीवन में करके बहुत ज़्यादा खुशियाँ पा सकती हैं आप। खुशियाँ हमें मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें वो आदतें छोड़नी होंगी जो कि हम छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मुस्कुराना अगर छोड़ चुके हैं, क्योंकि काम का दबाव, काम का प्रेशर और कई तरह की टेंशन के चलते मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पर दिखती है, लेकिन वो एक झूठी मुस्कान होती है। उसे छोड़ के आपको असल जो मुस्कान है वो रखनी होगी ज़िंदगी में। तो मुस्कुराना छोड़ चुके हैं तो मुस्कुराइए, दिल से मुस्कुराइए, पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर का और लोगों का, मिलने वालों का समय समय पर आभार भी जताएं।

जी श्रोताओं, तुलना करना भी छोड़ना होगा। हमेशा फिट और फाइन रहने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी, साथ ही दूसरों की निस्वार्थ मदद के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अपने शौक के लिए समय निकालना होगा अगर बदलाव चाहते हैं। पर्याप्त नींद लेनी होगी अगर अच्छी हेल्थ चाहते हैं। रिश्तों को समय देना होगा अगर रिश्तेदारी में अच्छा रहना चाहते हैं समाज में। और ईमानदार ज़रूर रहना होगा। ईमानदार रहने के लिए नहीं, ईमानदारी 100% निभाने के लिए। श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। आज हमने आपको जिन फिल्मों के गीत सुनवाए, उन फिल्मों के नाम हैं सोलवा साल, छबीली, ज्वेल थीफ, कल आज और कल, सरगम, गुलामी, क्रांति, दिल से ताल और कहो ना प्यार है।

श्रोताओं, आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आपने सुना अपने रेडियो दोस्त कपिल के साथ। अब दीजिए इजाज़त, फिलहाल के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे।

अभी आप कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, तत्पश्चात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएगी।

0: मिर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रूपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। JEM से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि JEM की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं JEM से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में

0: इन जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ सात आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि

0: किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, उठो क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं खास पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ हाजिर है
1: कविता पवार।
0: श्रोताओं, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण अपने साथ एक नई सोच, एक नई दिशा लेकर आती है,
1: हर दिन हमें एक नया मौका भी तो देती है खुद को बेहतर बनाने का और अपनी गलतियों से सीखने का।
0: तो क्यों ना इस सुबह की शुरुआत करें एक शांत मन के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ और ढेर सारी उम्मीदों के साथ।
1: उम्मीद और भी रहती है हिमांशु हमारे श्रोताओं की। आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सफर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं आपके लिए, हमारे लिए। तो टीम परिचय,
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं टीम परिचय के साथ। एचपीटी ट्रांसमीटर पर हैं सीएल सोनी और प्रकाश पवार।
1: कंट्रोल रूम से हमें साथ मिल रहा है सुनील जयपाल का।
0: और इस पूरे शो को सुरों और तकनीक से सजाने के लिए कंसोल पर हमारे साथ मौजूद हैं कपिल।
1: और नमस्कार कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ की।
0: तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई सुबह, एक नई जानकारी और बेहतरीन संगीत के साथ आने वाले सफर के लिए, क्योंकि नमस्कार में अब हर पल होगा खास।

0: रेडियो के सभी सुनने वाले दोस्तों को हिमांशु अवस्थी
1: और कविता का प्यार भरा नमस्कार सलाम। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार में।
0: दोस्तों, सुबह की पहली किरण के साथ जब हम खिड़की खोलते हैं तो क्या महसूस करते हैं? किसी जमाने में ठंडी हवा का झोंका आता था, लेकिन आजकल जून की सुबह भी ऐसा लगता है जैसे ओवन का दरवाजा खुल गया हो।
1: बिल्कुल सही कहा हिमांशु, पर क्या आपने ध्यान दिया है कि अब मौसम जो है वो नॉर्मल नहीं रहा है ना? कभी तो इतनी गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, या फिर ऐसी बारिश, ऐसी आंधियां कि पूरा शहर जैसे थम सा गया है, और एक भय भी अनजाना सा मन में घर करने लगा है। आंधियां चल रही हैं, बारिश आ रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, तो कहीं बेशुमार बेहताशा गर्मी है। तो नमस्कार में आज हम पूरे देश की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे हमारी रसोई, हमारी जेब, हमारी सेहत से जुड़ा है, यानी क्लाइमेट चेंज और हमारी जिंदगी।
0: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले माहौल को थोड़ा सा तरोताजा कर देते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमांशु अवस्थी। आज बात हो रही है बदलते मौसम की। जब भी हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये वैज्ञानिकों या बड़े बड़े नेताओं का सरदर्द है। हमें लगता है कि अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है तो आखिर हमारा क्या नुकसान
1: जी,
0: है?
1: बिल्कुल सही है, ऐसा कई मरतबा लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा ठहर कर ये भी सोचिए कि जब मंडियों में सब्जियों के दाम अचानक आसमान छूने लगते हैं तो उसका असर तो हमारी जेब पर होता है ना। तो असर हुआ ना ग्लोबल वार्मिंग का हम पर भी। तो ये जो बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, मार्च के महीने में घर का एसी दिन रात चलने लगता है, बिजली का बिल आपके बजट को बिगाड़ रहा है, तो ये सब असर तो आप पर ही हो रहे हैं।
0: और असलियत में यही क्लाइमेट चेंज है।
1: बिल्कुल। और ये जब हमारे बच्चों की बात करें, गर्मियों की छुट्टियों में बाहर खेलने की बजाय लू के डर से हमें उन्हें कमरों में कैद रखना पड़ता है तो
0: और
1: वो भी बड़ा
0: मजबूरन
1: दुख
0: हमें उनके हाथों में मोबाइल थमाना पड़ता है।
1: है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है ना। कहीं ना कहीं ये होता यही कारण है कि हम उन्हें बाहर नहीं जाने देते है ना। तो ये जो खतरा है भविष्य के लिए तो है ही है,
0: लेकिन
1: लेकिन
0: ये आज की हकीकत भी है जो हमारे बेडरूम से लेकर हमारी थाली तक पहुंच चुकी है। इस पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

0: दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार में। आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और हमारी जिंदगी की। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने बिना डर के खुलकर साफ हवा में कब सांस ली थी? आज शहरों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना हमारी सुबह की आदत बन चुका है। क्लाइमेट चेंज का सबसे सीधा और क्रूर हमला हमारी सेहत पर हो रहा है। बढ़ते तापमान के कारण नए नए वायरस और बीमारियां पनप रही हैं। कभी डेंगू का सीजन फिक्स होता था, आज साल के 12 महीने इसका डर रहता है। बुजुर्गों के लिए गर्मी जानलेवा साबित हो रही है और छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।
1: तो हिमांशु, हम अपनी जिंदगी में देखे सहेजने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं, अगर वही बीमार है तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो क्यों ना एक एक करके हम प्रयास करें, कोशिश करें और एक कदम भरें इस ओर कि धरती की ये जो बीमारी है उसे कहीं ना कहीं हम निजात दिला सकें। तो थोड़ा सा सुकून धरती को मिलेगा तो बहुत सारा सुकून हमारे जीवन में भी आएगा।

0: सुन रहे हैं ना आप प्रोग्राम नमस्कार। अब तक मैंने आपको सिर्फ डराया है ना, लेकिन यकीन मानिए हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है।
1: बिल्कुल।
0: अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेले मेरे करने से क्या होगा, पर सोचिए बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है।
1: बिल्कुल, है ना। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटे छोटे आविष्कार करने की जरूरत है। बस अपनी रोजमर्रा की आदतों को थोड़ा सा बदल लेने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप कमरे से बाहर निकलें, पंखा लाइट बंद करना कभी नहीं भूलें।
0: ये काम मैं कभी नहीं भूलता।
1: और दूसरी बात, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहने की आदत डालें। घर से निकलते वक्त एक कपड़े का थैला अपने साथ रखने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों।
0: और दोस्तों सबसे जरूरी बात, पानी की हर बूंद कीमती है। ब्रश करते समय या शेव करते समय नल को खुला ना छोड़ें।
1: और इससे भी जरूरी बात कि हर साल अपने जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। और सिर्फ लगाएं नहीं, उसे बड़ा होने तक उसे संभाल भी लें आप, है ना। तो अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें, हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल दे पाएंगे, एक सुकून भरी सांस दे पाएंगे।

0: दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है, हवा, पानी, धूप और छांव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी कद्र करना छोड़ दें। ये धरती सिर्फ हमारी नहीं, उन परिंदों की भी है जो चिलचिलाती धूप में पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं।
1: और अब दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है प्रादेशिक समाचारों का। समाचारों के बाद हम और आप फिर से एक साथ होंगे प्रोग्राम नमस्कार में।

श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से

0: हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पारंपरिक कलात्मक योगासन और लयबद्ध युगल सहित कई विधाएं शामिल होंगी। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में पुरुष और महिला एथलीटों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक शासन में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन में एआई, डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अधिक अपनाने की आवश्यकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
1: इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कल अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी में उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए परंपरागत खेती पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। इसमें संबल सखी तथा माय भारत के माध्यम से समाज सेवा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार, अनुभव और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री से साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत देश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अदालत ने दिनेश कुमार को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी की तलाश भी अभी जारी है। दोनों ने परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल किया और उसी के आधार पर 15 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा दी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बरसात हो रही है। बारा में शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज भी चल रहा है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार हवा के साथ कुछ देर झमाझम बरसात हुई।
1: बुधवार रात्रि को मौसम में पुनः परिवर्तन हुआ और गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के आसीन, सम्भूगढ़ और गुलाबरा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जन को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश के बाद अब किसान आगामी दिनों खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलिहानों की हकाई जुताई में जुट जाएंगे। लगातार 3 दिन पूर्व हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
0: मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर कल भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। पाली में आज से 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पुलिस लाइन हॉकी मैदान पर शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने टीम के टी शर्ट्स का विमोचन किया और मैदान का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 25 टीमें भाग लेंगी। 3 दिन चलने वाली ये स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से होगी। वहीं पाली की निलंजना चौधरी ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए।

0: तो श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर देते हैं आपके अपने उस शो में जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हिमांशु अवस्थी, और मेरे साथ हाजिर हैं
1: जी कविता पवार। और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी जानकारियां होंगी, सूचनाएं होंगी, सुरीले गीत होंगे और आप और हम साथ होंगे।

0: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार। अब वक्त है आज के इतिहास को जानने का। दोस्तों, हर दिन अपने अंदर इतिहास की कई कहानियां समेटे होता है और 4 जून भी ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। आज के इस खास सेगमेंट में हम जानेंगे 4 जून से जुड़ी उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिन्होंने दुनिया की राजनीति, युद्ध, समाज और संस्कृति पर एक गहरा प्रभाव डाला। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। श्रोताओं, 4 जून 1919, अमेरिका की सीनेट ने महिला मताधिकार यानी वुमेन सफ्राज बिल को पारित किया। इस ऐतिहासिक कदम ने महिलाओं को मतदान का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई राह खोली और उन महिलाओं को समानता की लड़ाई को एक बड़ी जीत मिली।
1: और बात करते हैं 4 जून 1942 की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4 जून को शुरू हुई बैटल ऑफ मिडवे प्रशांत महासागर में अमेरिका और जापान के बीच लड़ी गई और सबसे निर्णायक नौसैनिक लड़ाइयों में से ये एक मानी जाती है। इस युद्ध ने प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल दिया और जापान की बढ़ती हुई बढ़त को बहुत बड़ा झटका लगा दिया।
0: अब बात हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। 4 जून 2001, नेपाल में ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने राजसत्ता संभाली। ये घटना नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।
1: और 2003 में डोमिनिकन गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी अमेलिया वेगा को पनामा सिटी में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2003 चुना गया। उनकी जीत ने उन्हें विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई।
0: अब बात साल 2006 की। मॉन्टेनीग्रो ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस फैसले के साथ सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो का राज्य समाप्त हो गया। इससे पहले हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत से अलग राष्ट्र बनने के पक्ष में मतदान किया था।
1: तो दोस्तों, इतिहास जो है वो सिर्फ बीते समय की जानकारी नहीं, बल्कि ये एक सीख है, एक सबक है कि दुनिया लगातार बदलाव और नए अध्यायों की ओर बढ़ती है और नई खोज की ओर बढ़ती है। तो क्यों ना हम भी एक कदम नया भरते हैं इस गीत की ओर।

0: दोस्तों, बचपन बचपन यानी हंसी, खेल, सपने और निश्चिंत जिंदगी। हर बच्चे का हक होता है कि वो अपने घर में सुरक्षित सो सके, स्कूल जा सके, दोस्तों के साथ खेल सके और बिना डर के मुस्कुरा सके।
1: लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लाखों बच्चे हैं हिमांशु, जिनकी जिंदगी युद्ध और हिंसा के साए में गुजर रही है। कहीं बम धमाकों की आवाजें, कहीं गोलियों की बारिश, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा डर दर्द झेलते मासूम बच्चे, और उनके हाथों में खिलौनों की जगह डर और आंखों में सपनों की जगह

0: आंसू।
1: इसीलिए हर साल 4 जून को हम मनाते हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान पीड़ित हुए फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों के दर्द को देखते हुए की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हो रहे बच्चों के दर्द को उजागर करना था और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होना है।
0: संघर्ष के बीच मासूम बचपन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में युद्ध और संघर्ष के दौरान बच्चों के खिलाफ हिंसा से पहले कहीं ज्यादा बढ़ गई और हजारों बच्चे हत्या, घायल होने, अपहरण और हिंसा जैसी घटनाओं के शिकार हो गए।
1: दोस्तों, दुनिया के कई हिस्सों में बच्चे हर दिन डर के माहौल में जी रहे हैं। कई बच्चों ने अपने घर खो दिए, कई ने अपने माता पिता, और कई ऐसे भी हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी गलती क्या थी।
0: तो यहाँ एक संकल्प की आवश्यकता है।
1: दोस्तों, बच्चे कभी युद्ध नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, सुरक्षा चाहिए और एक शांत जिंदगी चाहिए।
0: दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो हमारी तरक्की भी कहीं ना कहीं अधूरी ही रहेगी। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे की मुस्कान बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि
1: क्योंकि वही मुस्कान आने वाले कल की उम्मीद है।

0: दोस्तों, आज दिन है गुरुवार का और हर गुरुवार को हम आपको लिए चलते हैं प्रकृति और पर्यावरण के करीब। तो आज हम आपको एक ऐसे जादूगर से मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास एक या दो नहीं पूरे 3 दिल हैं। सोचिए, एक दिल धड़कना बंद कर दे तो दो और बैकअप में है।
1: जी, कहते हैं कि दो दिल जो है वो खून की सप्लाई करने के काम आते हैं और तीसरा हार्ट जो है हार्ट में खून को बाकी शरीर में सर्कुलेट करने का काम करता है।
0: दोस्तों, उसका खून लाल नहीं बल्कि स्याही नीला होता है। और तो और, दिमाग के मामले में तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दे। शीशे की बोतल के ढक्कन को अंदर से खोल सकता है और अगर कोई दुश्मन पीछे पड़ जाए तो पलक झपकते ही अपना रंग और रूप बदल कर पत्थर या समुद्री पौधा बन जाता है।
1: बिल्कुल, और अब तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये है 8 हाथों वाला सुपर हीरो। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, समंदर का राजा और हमारे पर्यावरण का पक्का दोस्त ऑक्टोपस।
0: दोस्तों, ऑक्टोपस सिर्फ एक जीव नहीं है, ये समंदर का कचरा साफ करने वाला और वहां का बैलेंस बनाने वाला एक मैनेजर भी है।
1: अगर ऑक्टोपस समंदर में ना हो तो केकड़ों और छोटी मछलियों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वे समंदर के सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे और नतीजन समंदर बीमार हो जाएगा। और अगर समंदर बीमार हुआ तो हमारी पृथ्वी भी पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। और कहते हैं कि ये बहुत भूखा जीव है।
0: अच्छा,
1: हाँ, ऑक्टोपस को बेहद ज्यादा भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि कई कई बार ये अपनी भुजाएं भी खा जाता है और मजे की बात कि इसकी भुजाएं फिर से उग भी आती
0: उग
1: हैं।
0: भी आती है। यानी इस 8 हाथों वाले जीव के कंधों पर हमारे पर्यावरण की ढेर सारी जिम्मेदारियां भी हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: अफसोस ये
0: अफसोस
1: है
0: है,
1: कि इंसान का फैलाया हुआ प्लास्टिक, समुद्र का बढ़ता तापमान और आपका और हमारा लालच कहीं ना कहीं इस जादुई जीव के घर को तबाह कर रहा है। समंदर में प्लास्टिक खाकर ये जो जीव हैं ये दम तोड़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो समंदर का पूरा इकोसिस्टम जो है वो ठप हो जाएगा।
0: इसलिए दोस्तों, रेडियो के जरिए हम बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि पर्यावरण सिर्फ वो नहीं है जो हमें खिड़की के बाहर दिखता है,
1: बिल्कुल,
0: पर्यावरण वो भी है जो समंदर की गहराइयों में सांस ले रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करिए, नदियों और समंदर को साफ रखिए, क्योंकि जब तक वो नीली दुनिया सुरक्षित है तब तक हमारी ये हरी भरी दुनिया

0: कहीं पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। आज इंसान के पास जानकारी की कमी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास जानकारी का अभाव है।
1: जानकारी ना भी हो तो हाथ में ये जो फोन है ना, जानकारी का पिटारा है।
0: मोबाइल खोलो और हर चीज का ज्ञान आपको मिल जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, पैसे कैसे बचाने चाहिए।
1: इवन है ना, मैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे मतलब छोटी मोटी बीमारी हो गई, छोटा मोटा कुछ शरीर में तब्दीली आई, तो भी वो फट से पूछते हैं कि ऐसा होने पर क्या करें, ऐसा होने पर क्या ना करें इस दवाई को कितने दिन तक खा सकते हैं, किससे बिना पूछे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। मतलब हमारा आधा डॉक्टर, हमारी जिंदगी को चलाने वाला दिशा निर्देशक मोबाइल बन गया।
0: मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी से जुड़े हम हर सवाल AI से करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यह है कि सही बात जानते हुए भी हम उसे सही समय पर अपनाते नहीं हैं।
1: बिल्कुल, चाहे आप किसी से भी पूछें, आपको जवाब तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उस जवाब को जज्ब करने की ताकत भी तो आप में होनी चाहिए, या उस पर अमल करने का जो एक तरीका होता है उसे अपनाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तो सब कुछ जानते हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 मिनट और फोन देख लेते हैं,
0: और
1: पांच
0: ऐसे
1: मिनट
0: करते
1: बात कर
0: करते
1: लेते हैं
0: रात की 2 बज जाती है
1: हाँ जी।
0: और पता ही नहीं चलता।
1: और महीने की जब शुरुआत होती है तो हम मन ही मन तय करते हैं कि इस बार तो बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, और फिर देखने जब 30 दिन पूरे होंगे ना, तब देखेंगे कि कितना बचता है। लेकिन फिर से वही ऑफर, फिर से वही ऑनलाइन शॉपिंग, कहीं ना कहीं हमें लुभा ही देते हैं और हम उसमें बह जाते हैं।
0: तो दोस्तों, आज की जो बात है कि इंसान काम करने से नहीं थक रहा है, वो कंपैरिजन से थक रहा है, वो
1: बिल्कुल।
0: तुलना करने से थक रहा है। किसी की नौकरी देखकर किसी को टेंशन हो रही है, किसी के पास गाड़ी है तो उसको देखकर दूसरे को टेंशन है, किसी की सोशल मीडिया वाली जिंदगी देखकर अपने जीवन से शिकायत भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की चमक है, असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है, ये हकीकत नहीं है। हम मुस्कुराती हुई फोटो तो देखते हैं, लेकिन उस फोटो के पीछे जरूरी नहीं है कि उनकी जिंदगी में मुस्कान की वजह काफी हद तक है ना?
0: जी, इसलिए जिंदगी को आसान बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातों की नहीं, छोटी छोटी आदतें ही काफी होती हैं।
1: जी, सुबह उठकर थोड़ी देर आप अगर खुली हवा में बैठते हैं, घर वालों से बिना मोबाइल हाथ में लिए बात करते हैं, अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा बचाते हैं और फिर उसका उपयोग अपने सुकून के लिए करते हैं, तो फिर देखिए सच में जिंदगी की ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी खुशी का खजाना बन जाएगी।
0: और यकीन मानिए श्रोताओं, यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी राहत बन जाती हैं।
1: जी
0: और एक बात हमेशा याद रखिए, महंगी चीज़ें हर किसी को अमीर दिखा सकती हैं, लेकिन सुकून अच्छी आदतें और अपने लोगों के साथ से ही मिलता है।
1: बिल्कुल, और यही सच्ची खुशी है और यही सच्ची मुस्कान की वजह भी है।

0: श्रोताओं, बात उनकी जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। श्रोताओं, सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलती तस्वीरों का नाम नहीं होता, बल्कि कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ इतिहास बन जाते हैं। भारतीय फिल्म जगत में ऐसा ही एक नाम है, नूतन का।
1: तो भारतीय सिनेमा जगत में नूतन आज ही के दिन जन्मी। नूतन एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पे याद की जाती हैं जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के महज शो पीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरागत विचारधारा को बदलकर एक अलग पहचान दिलाई। सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र, मिलन जैसी कई सारी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने यह साबित किया कि नायिकाओं में भी अभिनय क्षमता काफी अधिक हद तक होती है, और इन्हें 5 फिल्मों में फिल्मफेयर पुरस्कार हासिल हुए।
0: श्रोताओं, नूतन की अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता, उनकी आंखों की मासूमियत, चेहरे की भावभंगिमा और संवादों की सादगी हर किरदार को जीवंत बना देती थी। चाहे दर्द हो, प्रेम हो, त्याग हो या आत्मसम्मान, हर भावना को उन्होंने इतनी सच्चाई से निभाया कि उनका अभिनय अभिनय नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा लगने लग गया था।
1: तो हर भाव की गहराई उनके अभिनय में समाई रहती थी। उनके सीने करियर के दौर में सभी दिग्गज और नवोदित अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया। अनाड़ी में राज कपूर जी के साथ, भोला वाला प्यार में अशोक कुमार के साथ, बंदिनी में संजीता अभिनय किया, और पेइंग गेस्ट कैसे भूल सकता है कोई, है ना? बड़ा ही खूबसूरत गाना उसका याद आता है।

और 1968 में एक फिल्म आई थी सरस्वती चंद्र, उसकी अपार सफलता ने नूतन को फिल्म इंडस्ट्री में नंबर वन नायिका बना दिया। और 1973 में एक फिल्म आई सौदागर, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे नवोदित अभिनेता के साथ उन्होंने काम किया और बेहद सफल ये फिल्म रही। कुल मिलाकर कहने की बात यह है

0: नमस्कार, आदाब और वड़क्कम मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र। दोस्तों, वक्त है उनके बारे में जानने का जो इंसान बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सिर्फ अपने कानों से संगीत सुनकर सीखे और एक दिन पूरी दुनिया के दिलों का वॉइस कैप्टन बन गए।
1: जी हाँ, एक ऐसे फनकार जिनका नाम सुनते ही दिल गुनगुनाने लगता है, श्रीपति पंडित तारादुल्ला बाला सुब्रमण्यम। ये इतना लंबा नाम सोचकर हैरान मत होइए, ये आपके और हमारे एसपी बाला सुब्रमण्यम है।
0: क्या बात, आज ही के दिन यानी 4 जून 1946 को जन्मे बालू सर का पहला सपना सिंगर बनना नहीं था। वो तो इंजीनियर बनकर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे, पर भाई जब किस्मत में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा हो तो इंजीनियरिंग की किताबें हाथ में कहाँ टिकती हैं।
1: बिल्कुल, और ये रास्ता ऐसा खुला कि इतिहास रच दिया। आपको एक ऐसा फैक्ट बताते हैं जिसे सुनकर आपके कानों को भी यकीन नहीं होगा कि हम जब दिन में 8 घंटे काम करके थक जाते हैं ना, तो हमारे एसपी बाला सुब्रमण्य सर जो हैं वो 8 फरवरी 1981 को एक ही दिन में कन्नड़ भाषा के 28 गाने रिकॉर्ड करते हैं। और बॉस, ये कोई सिंगर थे या गानों के सुपरसोनिक एक्सप्रेस?

0: वैसे दोस्तों, जो लोग 90 के दशक में बड़े हुए उनके लिए तो बालू सर का मतलब ही सलमान खान था
1: जी, उनकी आवाज थी बिल्कुल।
0: जैसे 70 के दशक में राजेश खन्ना के लिए किशोरदा गीत गाते थे, वैसे ही 90 के दशक में सलमान खान के लिए
1: SP बाला सुब्रमण्यम गाते। और वो गाने थे जो दिल दीवाना, बिन सजना के माने ना, या फिर भाग्यश्री के साथ मासूमियत वाला गाना आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। भाई क्या कहने इन गीतों का, बेहद ही खूबसूरत गाने ये रहे हैं।
0: और जब उन्होंने लता जी के साथ दीदी तेरा देवर दीवाना गाया, जो देश की हर शादी का नेशनल एंथम बन गया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथिया तूने क्या किया, आहा, आज भी जब हम सुनते हैं तो 90 के दशक में इस गीत के साथ चले जाते हैं।

0: लेकिन दोस्तों बालू सर सिर्फ चॉकलेट बॉय वाले गानों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने 1980 के दशक में क्लासिकल फिल्म शंकर भरणम देखी है। वो जानते हैं कि बिना शास्त्रीय संगीत सीखे उन्होंने क्लासिकल गानों में वो तान लगाई कि उन्हें पहला नेशनल अवार्ड मिल गया।
1: और जब बात AR रहमान साहब के साथ उनकी जोड़ी की जाती है तो म्यूजिक नेक्स्ट लेवल का चला जाता है। और गाना कोई भी हो, अगर उसमें SP बाला सुब्रमण्यम है तो उनकी आवाज़ का जादू जो है वो आकाश छूता है।

0: तो चलिए यादों के इस सफर को और हसीन बनाते हैं। चाय का एक कप हाथ में थामिए और सुनिए बालू सर और लता जी की आवाज में हम आपके हैं कौन का ये बेहद खूबसूरत और इमोशनल गाना, जिसे सुनकर हर दिल कह उठता है मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
1: मिलना बिछड़ना ये दस्तूर है।

0: फिर मिलने के लिए जुदा होना
1: निहायत आवश्यक होता है। तो नार में आज का अंक बस यहीं तक। कविता और
2: हिमांशु अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको विविध कलाकारों की गायी कुछ चुनिंदा लोक रचनाएं

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये लोक रचना जिसे गाया है सद्दीक खां केसुला पार्टी ने।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं भैरा राम दमामी और पार्टी की गाई ये लोक रचना।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। श्रोताओं, यह है कार्यक्रम की अंतिम भेंट, सरदार खां लंगा पार्टी की आवाज में ये लोक रचना।

0: इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर।
1: और दिलों को जोड़ने
0: लीजिए
1: प्रस्तुत
0: है सुगम संगीत।

0: क्लिक पर हमारे स्टेशन।
1: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको अनूप जलोटा के गाए कुछ चुनिंदा भजन सुनवा रहे हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस भजन के साथ।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते, नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया, ये मैं मां ने कह दिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे

कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की। मां प्रसन्न जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।

थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा।

0: विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सजा माने।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
2: चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के कुछ चुनिंदा भजन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं सुर फिल्म से। गीतकार निदा फाजली, संगीतकार MM करीम, और इस गीत को गाया है लकी अली ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल का रिश्ता से। गीतकार है समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। माफ कीजिए, फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे दिल है तुम्हारा फिल्म से। बोलते समीर के संगीत नदीम श्रवण का, और इस गीत को गाया अलका याग्निक और कुमार सानू ने। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं तलाश फिल्म से ये गीत। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत संजीव दर्शन का, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल का रिश्ता फिल्म से ये गीत। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण ने।

आइए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं बॉम्बे फिल्म से ये गीत। वो लिखे हैं महबूब ने, संगीत ए आर रहमान का, और इस गीत को गाया है के एस चित्रा ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी का लिखा ये गीत। संगीत है जतिन ललित का। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। फिल्म का नाम है हम तुम।

हम तुम फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं चमेली फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान ने, संगीत है संदेश सांडिल्य का और बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

श्रोताओं, समीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म काश आप हमारे होते से। संगीत संदेश सांडिल्य का, इस गीत को गाया सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

जावेद अख्तर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म क्यों हो गया ना से। संगीत संकार एहसान लॉय का, और इस गीत को गाया साधना सरगम और उदित नारायण ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसको गाया है शमशुद्दीन ने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता हूँ, ये लोक रचना आप सुन रहे थे उगम राज पार्टी की आवाज़ में। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं सीमा मिश्रा का गाया ये अगला लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे आपकी।

0: धन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ये लोक रचना आप सुन रहे थे सैफी खान, करचा खान खानियानी और नेहरू खान की आवाज़ों में। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे चंदन दास की गाई ये गज़ल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ये गज़ल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वरों में। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरण की गाई ये रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत के आखिर में आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की गई ये रचना।

0: श्रोताओं, इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है। प्रतियोगिता में 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योगासन भारत की यह पहल वैश्विक स्तर पर योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों सहित 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली शुरू हुई। सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई। जैम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉ

0: अमित यादव ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इन गांवों में कम्युनिटी हॉल के नीचे इन बंकरों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य चयनित गांवों को पक्की सड़कों और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जनाभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी भवनों में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कल इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह में जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा की 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई इलाकों में सुबह बरसात हुई। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। वहीं सवाईमाधोपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुनवाड़ा सगला किसान भाई ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाइया इन दिन आप खेती बाड़ी रेजी का काम काज व्यापक कर रहे हैं और साथ है देखो मौसम भी ठंडो रह रियो है, आंधी डबेरा भी आ रिया है, मैं भी वह रियो है। हमें आप रे किसान भाई खेती बाड़ी रे काम काज रे साथ साथ पशुपालन रोजी को काम काज है वो भी आप रे साथ क्रिया करे ताकि खेती रे साथ साथ पशुपालन भी हो जा, खेत रे मैंने जी को चारो उत्पादित हुए वो पशु रे काम में आ जावे और पशुआ सु जिकी गोबर मिले वह बढ़िया अपने खेता रे मैंने फसला रे मैंने किसान भाई रे काम में आ जावे। हमेशा खेती बाड़ी और पशुपालन एक दूसरे रा पूरक क्रिया है और ज्यू किसान भाइया बात करा की आप पशु पाला तो उन्हें वास्ते चारे री भी अपने व्यवस्था करनी पड़े। आज आपने जानकारी दी रहा कि भाई हरे चारे री जी की उन्नत कृषि तकनीक है वह आप किन तरह से अपना सका। किसान भैया खास तौर से आपने पशुओं जो को स्वास्थ्य है उन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है और हरे चारे रो विशेष महत्व है कि भाई पशु अपनो हरो चारो चरे तो वो अच्छो रहे स्वस्थ रहे। इनरे हाथे हाथे जिका दुधारू पशु है अपने वाणे जो को दूध रो उत्पादन है वो बढ़ाने में बहुत सहायक होया करे। हरो चारो पशुओं वास्ते सुपाच्य और रुचिकर होया करे जिका अपना पशु है बहुत चाऊ अपने खाया करे और स्वास्थ्य वर्धक तो भेज है और साथ साथ जो आप बात करे भाई दूध रे महीने भी बदबो करे है। हरे चारो रो जो को फायदो है विंडी आप बात करा तो इन महीने हरे चारे महीने प्रोटीन वे कैल्शियम फास्फोरस वे उचित मात्रा में तत्व उपलब्ध होना सु पशुरी जी की दूधरी उत्पादन जी की क्षमता है इन महीने भी इजाफो हुआ करे। हरो चारो खिलाना सु पशुरी जी की पाचन क्रिया है वह भी ठीक क्रिया करे। पशु ने 15 से 20 किलो हरो चारो अपने खिलाना चाहिए। चारे महीने विटामिन ए री प्रचुर मात्रा सु पशु जी को है वो बीमारियां सु उनरो बचाव हुए और हरे चारे महीने पानी री मात्रा हल्ली होने कारण सु अबार गर्मिया दिन महीने

किसान भाया आपा जानकारी ले रहा था कि भाई हरे चारे री जी की उन्नत कृषि तकनीक है वह आप अपने खेत में किन तरह से अपना सका और जी आप बात करता है कि भाई बीज ने आपा उपचारित कर लिया हाँ उनरे बाद में आप फसल बा भी दी तो टेमो टेम जी की सिंचाई है निराई गुड़ाई है अभी आपने टेमो टेम आपने करनी चाहिए। खड़ी फसल महीने भी आपा उर्वरक देवा और बाद महीने जिन वक्त मान लो सिट्टा भी आवे उन वक्त भी पानी जी की आवश्यकता है तो वह आपने टेमो टेम आपने देवनी चाहिए और मान लो बारिश हो जा तो पानी जी की सिंचाई जी की व्यवस्था है वह आपने थोड़ी कम करनी पड़े नहीं तो आपने सिंचाई टेमो टेम आपने करनी चाहिए। हरे चारे महीने किसान भाई कहीं क्रिया करे के बाजरा उत्पादन ले चाहे आपने तो इन वास्ते जी की उन्नत किस्म है वो राजको है L74K599 राज बाजरा चरी जॉइंट L72 व्या करे और पूरे जो को भगत है इन किस्मा रे वास्ते वो मार्च ले जुलाई तई व्या करे और बीज रीज की मात्रा है वह किलोग्राम प्रति हेक्टर 10 से 12 किलोग्राम किसान बहन ने लेनी पड़े। और जो आप खाद और उर्वरक की बात करा तो गोबरी जी की खाद है इंडर साथे जी की कंपोस्ट खाद है वह आप लेना 15 से 20 टन प्रति हेक्टर और नत्रजन जी को है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर अपन देवा। हम बात आवे भी आप बाजरा रो जी को हरो चारो है आप बात दियो हाँ तो पहली कटाई फूल आवना वक्त वे उन वक्त आप लेवे लंग टंगे आप बात करा 50 से 60 दिन तई आप ले सका एक कटाई लगभग आप बात करा तो 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर हुआ करे और चार कटे आप ले ला लंगे टंगे तो 900 से 1000 जी को क्विंटल है वो प्रति हेक्टर हो जाया करे।

दो है, एसएसजी गुनसाठ तीन है, पीसी नौ है, पीसी 23 है, एमपी चरी है, सीएसएच 6 है, एक इसमें है जवारी। और बोरी जी को टेम है वो मार्च लेर जुलाई तक आप किसान भैया बाया करें, और बीजरी जी की मात्रा है वह 40 लेर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर होया करें। हमें जवारी हरे चारे रूप में उत्पादन किसान भाई लेनी चाहे तो इन महीने भी जिकी गोबी की खाद है, कम्पोस्ट जी की खाद है, वह 15 लेर 20 टन प्रति हेक्टर आप देवे। इन रहा जी आप बात करें नित्रजन है, फास्फोरस है, लघु लघु आप देवे तो फसलों जी को उत्पादन है वो आप बढ़िया रिया करे। हमें बात आवे कि भाई आज जवारी जी की फसल आप पाई है तो कटाई आपा किन बगत करा, तो एक कटाई जी की है वह 50% फूल आजा उन बगत लंगे टंगे 60 लेर 70 दिन में पकड़ ला, और हल्ली जी की कटाई है वन वास्ते पहला फूल आवे शुरू हो जावे और बाद में महीने 40 लेर 45 दिन रहे अंतराल महीने आप टेमो टेम आप कटाई आप करता रहे। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई आपा हरे चारे री उन्नत कृषि तकनीक अपनावता था हरो चारो जी को उत्पादित है वो आपा किन तरह कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रूप बगत पूरा वेरियो है दिनेश राणे जाने सीख दिराओ राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम नारीवाटी का।

0: वंदन अभिनंदन, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नारी वाटिका में। आज की नारी वाटिका का सफर आप तय करेंगी अपनी दो प्यारी सी सखियों के साथ। मैं हूँ पुण्यमा और मेरे साथ है
1: मैं हूँ खुशबू।
0: तो
1: तो
0: स्वीकार
1: स्वीकार
0: कीजिए
1: कीजिए
0: हमारा
1: हमारा प्यार
0: प्यार
1: भरा
0: भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: पूर्णिमा, कहते हैं ना कि एक शांत मन, स्वस्थ शरीर और सफल जीवन की शुरुआत जो होती है वो अच्छी नींद से होती है।
1: लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना खुशबू, वो हमारी जो नींद, हमारा जो दिनचर्या और जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य है, उसको लगातार हम उसमें ना नजरअंदाज करते जाते हैं।
0: एग्जैक्टली। और पता है इसका असर ये होता है ना कि हम सिर्फ हमारी खुद के शरीर को बर्बाद नहीं करें, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है।
1: क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, और अगर
0: एग्जैक्टली।
1: हम उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी उसको फॉलो नहीं करेंगे।
0: क्योंकि आज की जिंदगी कल की पीढ़ी का भविष्य होता है।
1: हाँ, और यही नहीं, आज हम बात करेंगे मासूम बच्चों की, उनके हमारे हमारी नींद की, हमारा दिनचर्या, हमें कौन से पौधों से अच्छा महसूस होता है, इन सब के बारे में।
0: यानी आज का जो हमारा नारी वाटिका है वो बहुत स्पेशल होने वाला है सखियों। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज के दिन विशेष के बारे में कि आज जो है वो 4 जून है, तो आज के दिन में क्या है खास।
1: हाँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और ये जो कार्यक्रम है वो आपको सोचने पे और अपने जीवन में कुछ नया सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जरूर प्रेरित करेगा।
0: तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और प्रोग्राम की शुरुआत में सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा मीठा सा सॉन्ग।

0: सखी स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी फेवरेट प्रोग्राम नारी वाटिका में। और पूर्णिमा, बात कर रही थी हम इस सॉन्ग से पहले कि आज का दिन जो है वो खास भी है, तो आप बताइए क्या है आज खास?
1: देखो खुशबू, जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो जीवन होता है ना, वो बहुत सुंदर और संवेदनशील दौर से वो गुजरते हैं बचपन में। और यही समय होता है जब बच्चे अपने आसपास का जो वातावरण है उसे सीखते हैं, अपनी भावनाओं को वो समझते हैं और अपने व्यक्तित्व की नींव तैयार करते हैं।
0: एग्जैक्टली, यानी कि आज का जो दिन है वो बच्चों से रिलेटेड है ना।
1: हाँ, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हिंसा, डर, अपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं।
0: तो आज का दिन जो है वो सखियों, वो है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे हर साल 4 जून के दिन मनाया जाता है। और जैसे कि पूर्णिमा ने अभी बताया था कि जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अगर कुछ भी उनके साथ छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो वो पीड़ित हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं किसी चीज़ के, तो पूर्णिमा कहीं ना कहीं उनके मन पर गहरे घाव बन जाते हैं और इसका असर बहुत लंबे समय तक पड़ता है।
1: मतलब छोटी सी डांट, कठोर शब्द बोलते हैं, अगर हम उन्हें अपमानित कर दें, उनको डरा दें किसी से, तो भी वो एक तरह की उनकी प्रताड़ना ही है।
0: जी,
1: क्योंकि बच्चे तो एक कोमल फूल की तरह होते हैं ना, उन्हें बड़े प्यार से रखना चाहिए, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि उनको सिखाने के चक्कर में उनको डांट देते हैं।
0: तो सखियो ये दिन जो है वो हमें याद दिलाता है कि दुनिया के लाखों बच्चे आज भी शारीरिक, मानसिक और कहीं ना कहीं भावनात्मक हिंसा का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज ये है कि हम उन्हें सुरक्षित रखें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें उनके साथ, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो सम्मानजनक हो।
1: और यही है कि यदि परिवार और समाज मिलकर उन्हें सकारात्मक माहौल अगर उनको देता है, तो जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत सहनशील बन जाते हैं, बहुत संवेदनशील बन जाते हैं और उनको एक जिम्मेदार एक नागरिक भी बन सकते हैं।
0: एग्जैक्टली पूर्णिमा, और ये तो हम सभी देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, अगर वो स्माइल पास करते हैं, उनके चेहरे
1: हाँ
0: पे खुशी होती है, तो हमें भी अंदर से अच्छा लगता है ना। हमारी फैमिली में भी, हमारे सराउंडिंग्स में भी कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं तो उनका चेहरा मुरझा जाता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक खुशनुमा माहौल में रहते हैं ना, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को
1: उनके
0: बताती है।
1: चेहरे से पता चल जाता कि बच्चा अंदर से खुश है या परेशान है। तो
0: एग्जैक्टली
1: हमें ऐसा माहौल देना चाहिए बच्चों को कि वो हमेशा खुश रहे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में।
0: बिल्कुल, तो इस विशेष दिन पर आइए सखियों हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि अपने आसपास के हर बच्चे को प्यार, सम्मान और सुरक्षा का वातावरण देंगे, क्योंकि जब बचपन सुरक्षित होता है तभी सपने मजबूत होते हैं और भविष्य भी सुनहरा बनता है।

0: जी हाँ सखियों, इस प्यारे सी म्यूजिकल ट्रैक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से प्रोग्राम नारी वाटिका में। और आइए अब सुनते हैं एक भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता का विषय है सीलिएक एलर्जी, कारण, निदान और उपचार। इस विषय के लिए हमने हमारे आकाशवाणी केंद्र में आमंत्रित किया है डॉक्टर नमिता भंडारी को। आप एक आहार विशेषज्ञ हैं और इसी विषय में आपने PhD भी की है, इन्हीं 20 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है। चलिए सुनते हैं भेंट वार्ता और इस विषय पर बातचीत की है पूर्णिमा जैन ने।
1: भारतीय मनुष्यों ने मनुष्य जीवन के 7 सुख बताए हैं। उनमें से पहला सुख निरोगी काया बताया है, यानी स्वस्थ तन मन सुखी जीवन का प्रथम सोपान है। कई तरह के रोग हैं जो हमें निरोग नहीं रहने देते हैं, और उनमें से एक गंभीर व्याधि है सीलिएक एलर्जी। सीलिएक एलर्जी, कारण, निदान और उपचार विषय पर बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नमिता भंडारी को। डॉक्टर नमिता भंडारी एक डाइटिशियन है और आहार विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम नारी वाटिका में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर साहब, आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है, जिसे मेडिकल साइंस में सीलिएक एलर्जी कहते हैं। क्या है ये सीलिएक एलर्जी?
2: देखिए, बेसिकली इसे हम सीलिएक डिजीज कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो सीलिएक डिजीज ग्लूटेन नाम के एक तत्व से एलर्जी होती है, जो जनरली गेहूं, मैदे आदि में पाया जाता है। तो जब उस ग्लूटेन का कंजम्पशन या जो लोग उसको खाते हैं और वो उससे एलर्जिक हैं या उन्हें सूट नहीं करता है, तो उससे ये बीमारी उत्पन्न होती है।
1: तो ये ग्लूटेन जो है वो क्या होता है?
2: गेहूं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन। तो जब भी आप गेहूं का आटा पानी में या छाछ में या दही या दूध, मतलब जब भी वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो वो एक सब्सटेंस या पदार्थ बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटेन। ये ग्लूटेन बेसिकली जो आटे का लचीलापन है या लोच है आटे में, वो सारा इस ग्लूटेन की वजह से होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो वो बनानी आसान है, पर चावल के आटे की या ज्वार के आटे की रोटी बनानी आसान नहीं होती। उसका मुख्य कारण ही यही है कि चावल और ज्वार, इन जैसे धानों में ग्लूटेन नहीं होता है, ये सिर्फ गेहूं में ही होता है। इसलिए बेकरी में जहां ब्रेड, बिस्किट्स, खारी, पफ, नूडल्स ऐसी चीजें बना रहे हैं, तो उनमें उसकी शेप लेने के लिए ये ग्लूटेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।

0: तभी गेहूं की रोटी गोल बनती है और जो अपन ज्वार बाजरे की उसकी साइड की किनार
1: किनारे
0: जो
1: फट
0: होती है वो
1: जाते
0: फट
1: हैं।
0: जाती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो सीलिएक एनर्जी है उसके कारण क्या है?
1: देखिए, सीलिएक डिजीज का एक ही कारण है मुख्य तौर पर, गेहूं से एलर्जी। मतलब जो लोग ग्लूटेन को, गेहूं से भी मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी ग्लूटेन, जो लोग ग्लूटेन नहीं पचा पा रहे हैं
0: हाँ
1: उनको ये बीमारी
0: आती
1: हो
0: है।
1: जाती है।
0: तो
1: इसके और भी फॉर्म्स हैं, थोड़े कम सीवियर फॉर्म्स भी होते हैं जिन्हें हम नॉन सीलिएक सेंसिटिविटी कहते हैं या सिर्फ वीट एलर्जी कहते हैं। तो उनमें थोड़े थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, तो वो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको वो
0: वो डिफरेंस
1: समझा
0: पता
1: देंगे।
0: समझा
1: बिल्कुल।
0: देगा। तो ये जो सीलिएक एलर्जी जो है वो हमको किसी भी उम्र में हो सकती है या फिर जो बच्चों में या फिर यूथ में या बड़ी उम्र में ही होती है?
1: देखिए, ज्यादातर तो बच्चों में होती है, पर हमारे पास ऐसे मरीज हैं जिन्हें एट द एज ऑफ 35-40
0: हाँ
1: पता चला। तो मतलब आप पूरी उम्र आपने गेहूं खाया है और अचानक 40 साल की उम्र में आपको पता लग रहा है कि हमें गेहूं
0: से
1: नहीं
0: एलर्जी।
1: सूट हो रहा है या
0: हाँ
1: उससे हमें एलर्जी है। तो जनरली बच्चों में होता है और भी किसी भी उम्र में हो सकता है, इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड, नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही होगी।
0: लेकिन जैसे जो बच्चों के अंदर लक्षण पाए जाते हैं वो बड़ों में भी वही लक्षण होते हैं या हर उम्र में उसके जो लक्षण है वो अलग-अलग होते हैं?
1: देखिए, सीलिएक डिजीज की आप कह लीजिए खूबसूरती या प्रॉब्लम, दोनों में जो भी आप कहना चाहें, वो यही है सबसे बड़ी कि इसमें हर जने में अलग सिम्टम होता है। तो जो
0: अच्छा
1: जनरल सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर हम बच्चों में देखते हैं वो है जैसे दस्ते होना, तो मतलब आपका डायरिया रुक ही नहीं रहा है बच्चे का, पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, लंबाई नहीं बढ़ना, खून की कमी होना। कई बार अडल्ट जो ऑनसेट के मरीज आते हैं उनमें सिर्फ होंठ की कोरें फट रही हैं या बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं या स्किन पे रैश हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर ये रेपिटेडली हो रहे हैं तो कई लोग जो देखिए थोड़े से अवेयर होते हैं इस बारे में या
0: हाँ
1: एजुकेटेड हैं इस बारे में, वो खुद ही पता लगा लेते हैं कि अच्छा, मैं जब गेहूं की रोटी खाता हूं तो मेरे ऐसी तकलीफ हो जाती है या
0: ये
1: कोई तकलीफ हो
0: जो
1: जाती
0: बड़े
1: है,
0: होते हैं वो तो इस चीज को पहचान पाते हैं, पर
1: पहचान
0: जो
1: सकते हैं।
0: बच्चे हैं उनके अंदर अपन को ही उसके अंदर खोजना
1: उसमें माँ
0: पड़ेगा।
1: बाप को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा और उन्हें ऐसी बीमारी कोई हो तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा बच्चे को।
0: ये जो सीलिएक एनर्जी के जो लक्षण आपने बोला स्किन के ऊपर धब्बे, तो कई बार स्किन पे जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं वो भी
1: नहीं
0: एलर्जी है,
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: इसकी वजह से
1: नहीं
0: होते
1: वो
0: हैं?
1: दूसरा स्किन का प्रॉब्लम है। बट हाँ, कई बार ऐसी स्किन की जो डिजीजेज हैं उनमें अगर आप ग्लूटेन बंद कर दो, गेहूं बंद
0: हाँ
1: कर दो, तो वो हेल्पफुल हो सकता है।
0: तो अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है तो एक बार ग्लूटेन छोड़ के ट्राई कर
1: बिल्कुल,
0: सकता है कि ये
1: हाँ
0: ना
1: ट्राई कर सकते
0: उसको
1: हैं।
0: ये
1: पर देखिए,
0: अलग।
1: ग्लूटेन छोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने गेहूं बंद कर दिया।
0: हाँ
1: उसमें गेहूं, सूजी, मैदा, आपके मैदे से बनी हुई ब्रेड है या बिस्किट है या सूजी से बना हुआ कोई और सामान है या किसी में एज अ थिकनर या एज अ बाइंडिंग एजेंट कुछ ऐसी चीज डाली जा रही है, तो वो भी सब आपको बंद करना पड़ेगा।
0: ये कॉर्नफ्लावर वगैरह जो बाइंडिंग एजेंट के तरह
1: कॉर्नफ्लावर
0: उसकी
1: तो मक्की का
0: उसके अपन
1: है,
0: ने
1: बट
0: नहीं
1: अगर
0: यूज कर
1: आप
0: सकते
1: मैदा यूज कर रहे हैं
0: उसी
1: किसी
0: के
1: में,
0: साथ।
1: हाँ, तो वो बंद करना पड़ेगा।
0: और ये एक बार जिसको सीलिएक एलर्जी हो जाती है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं या वो फुली क्योर होती है?
1: सीलिएक डिजीज का एक ही क्योर है कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेते रहें। इसमें जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नॉन सीवियर वर्जन होते हैं, तो कई बार वो उम्र के साथ ठीक हो जाते हैं कि अगर नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो
0: हाँ
1: वो ठीक हो जाएगी, या वीट एलर्जी है, सिर्फ गेहूं के दूसरे तत्वों से एलर्जी है, ग्लूटेन से इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो ठीक हो जाएगी। बट अगर वो एक डॉक्यूमेंटेड सीलिएक डिजीज है, मतलब आपको ये सिम्टम हो रहे थे, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक जांच कराई जिसे हम TTG IgA कहते हैं।
0: तो ये जो जांच है उससे कैसे पता चलता है या ये कहीं पे भी हो जाती है?
1: हाँ, ये कहीं पे भी, अब तो आजकल सब लैब्स करते हैं, तो जैसे ही आप, ब्लड का टेस्ट है ये,
0: हाँ
1: यूजुअली हम पहले ये करते थे कि TTG IgA अगर पॉजिटिव होता था तो एक
0: हाँ
1: बायोप्सी करते थे, पर अब
0: तो
1: क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बायोप्सी अंदर से एक आंत का टुकड़ा लेना और फिर उसको स्टडी करना एक अलग प्रोसेस है, बच्चे कराना नहीं चाहते, बड़ी उम्र के लोग भी नहीं कराना चाहते, तो TTG जो हम ब्लड में जांच कराते हैं वो अपने आप में सफिशियंट है वैसे, इसके बाद आपको कोई जांच की जरूरत अदरवाइज नहीं पड़ती है।
0: तो जो जांच जब करवाते हैं तो उसमें क्या सिम्टम हमें दिखता है जिससे कि हम ये पता चल जाता है कि हमें सीलिएक एलर्जी है?
1: देखिए, अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे मान लीजिए खून की कमी है कि बच्चा सब खा रहा है पर फिर भी खून की कमी है, या उसका वजन नहीं बढ़ रहा, लंबाई नहीं बढ़ रही, पेट फूला हुआ रहता है या पेट में दर्द रहता है, या लूज मोशंस हैं जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे, तो किसी भी बच्चों के डॉक्टर या पेट के डॉक्टर को दिखाइए और वो अपने आप ब्लड टेस्ट कराएंगे। तो अगर ये TTG 20 से ज्यादा है
0: हाँ
1: खून में तो ये एक पैरामीटर है कि आपको सीलिएक डिजीज है। तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं ऐसी कंप्लेन्स के साथ और हम उनकी जांच कराते हैं, तो ये TTG कई बार 600, 700, 800 तक भी होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि वो तो गेहूं खा ही रहे होते हैं ना, उन्हें
0: हाँ
1: मालूम ही
0: उनकी
1: नहीं
0: तो
1: होता
0: डेली
1: है,
0: डाइट के अंदर
1: क्योंकि
0: वही
1: हमारा
0: है।
1: स्टेपल है गेहूं नॉर्थ
0: हाँ
1: इंडियंस का। जैसे अब आप साउथ में चले जाएंगे तो आप वहां सीलिएक डिजीज आइडेंटिफाई

0: ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्टेपल राइस
1: राइस
0: है, तो
1: है.
0: हर चीज राइस से बनती है, उसमें ग्लूटेन होता ही नहीं है, नेचुरली ग्लूटेन फ्री है. तो ये टेस्ट हमारे यहाँ क्योंकि वीट स्टेपल है, और वो बच्चा लक्षण पे माँ बाप भी नहीं पहचान पाते कई बार कि ये लक्षण ऐसे क्यों हो रहे हैं, तो जब आते हैं तो वो इस लेवल पे आते हैं. पर जैसे ही वो 3-4 महीने तक ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे तो वो अपने आप लेवल 20 के नीचे आ
1: अपना आप आ
0: जाएगा. आ
1: जाएगा,
0: जाएगा
1: पर
0: बिल्कुल,
1: जब वो 20 के नीचे आ जाएगा तो उसके बाद भी हम ग्लूटेन शुरू नहीं कर
0: नहीं कर
1: सकते
0: सकते,
1: हैं
0: बिल्कुल नहीं कर सकते.
1: उनको अपनी लाइफ में बिना, मतलब ग्लूटेन फ्री ही
0: बिल्कुल
1: खाना उनको
0: बिल्कुल
1: अपना
0: बिल्कुल
1: सेवन करना है.
0: बिल्कुल.
1: सब ये बताइए कि जब गेहूं की एलर्जी होती है वो जेनेटिक होती है या मतलब जैसे परिवार में पहले से किसी सदस्य को एलर्जी है तो पूरे परिवार को उसका ध्यान रखना चाहिए खुद का कि भाई हमें ना हो जाए कहीं तो हम भी ग्लूटेन छोड़ दें.
0: देखिए, सीलिया डिजीज या ग्लूटेन एलर्जी जो भी है,
1: हाँ
0: ये जेनेटिक नहीं है, मतलब आपके पेरेंट्स से आपको नहीं
1: नहीं
0: मिलेगी.
1: मिलेगा.
0: ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है. जनरली इम्यून सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि बाहर से कोई भी कीटाणु या फॉरेन बॉडी
1: हाँ
0: आपकी बॉडी में गई तो इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकाल के फेंक देता है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं
1: जी,
0: उन्हीं के अगेंस्ट आपका ही इम्यून सिस्टम काम कर रहा है.
1: मतलब ये अंदर ही अंदर डेवलप
0: हाँ,
1: कर
0: ये
1: रहा है
0: अंदर ही
1: उसको.
0: अंदर डेवलप होता है. अच्छा, ये बेसिकली तो कोई जीन कैरी कर रहा होता है, पर ऐसे जेनेटिक नहीं है कि अगर मुझे है तो मेरे बच्चे को भी हो जाएगी. अनुवांशिक उस प्रकार से नहीं है,
1: तो
0: और
1: ये
0: कई बार सिर्फ एक भाई बहन में से एक को होती है, दूसरे को नहीं है, और पेरेंट्स को भी नहीं थी. अनुवांशिक तो नहीं है कि घर में किसी को भी नहीं थी और चौथी जनरेशन में या चौथी पीढ़ी में जाके किसी को
1: पर ऐसा भी तो हो
0: बीमारी
1: सकता है
0: है.
1: कि पहले किसी को पता नहीं चलती थी कि ये डिजीज है, पर अब उस उनकी फैमिली में सबको हो
0: देखिए,
1: रही है.
0: ये फर्क तो पढ़ाई है, जानकारी हमारे पास अब ज्यादा हो गई क्योंकि हम डायग्नोज ज्यादा कर रहे हैं. पहले भी हो सकता है इतने ही मरीज होते हो, पर क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक ही नहीं था, उसकी जांच करने का कोई तरीका ही नहीं था, तो हम कैसे करते. पर फिर भी अनुवांशिक नहीं है,
1: नहीं है.
0: ऑटो इम्यून है. तो आपकी इम्यून सिस्टम अपने आप ही ग्लूटेन के अगेंस्ट एक्टिव होकर एंटीबॉडीज बना रहा है, तो वो जो एंटीबॉडीज बन रही है उनके रिएक्शन से आपको ये सब लक्षण दिखाई देंगे.
1: और जब ये सीलिएक एनर्जी होती है तो उस व्यक्ति का जो बौद्धिक क्षमता और उसका जो विकास है वो भी प्रभावित होता है.
0: अगर आपको सीलिया डिजीज है और आप एक ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बौद्धिक विकास और क्षमता प्रभावित हो सकती है. हालांकि आजकल जितने भी मनोविकार हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे ऑटिज्म हो, डाउन सिंड्रोम हो, या ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें ग्लूटेन फ्री का रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो कई बच्चों में ये नुकस इसके जो मतलब प्रभाव देखने को मिलता है कि अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वो बच्चे की रिकवरी या उस बच्चे का सिम्टोमेटिक रिलीफ बेटर होता है.
1: अगर किसी बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी है और वो रेगुलर नहीं पर हफ्ते में एक दो बार ग्लूटेन का सेवन कर लेता है तो ये सही है या उसको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए?
0: देखिए, आइडियली तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर मैं आपको बाय द बुक बताऊं.
1: पर बच्चे
0: बिल्कुल,
1: हैं, स्कूल जाते हैं, कभी
0: हाँ.
1: उन्होंने उसका सेवन कर लिया तो उस
0: उसके
1: सिचुएशन.
0: बाद 24 घंटे तक खूब पानी पिए, क्योंकि
1: हाँ
0: बच्चे को अगर देखिए बहुत सेंसिटिव जो बीमारी बीमारी होती है उसमें तो बच्चे को लक्षण आ जाते हैं. तो अगर मान लीजिए पेट दुख रहा है तो पेट दर्द की दवाई दें, एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें कि भाई ऐसा हो
1: हाँ
0: गया है तो अब मुझे क्या करना है आगे. अदरवाइज खूब सारा पानी पिए तो वो थोड़ा सा ग्लूटेन फ्लश हो जाता है इंटेस्टाइन्स में से, आंतों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता. और फिर कोशिश करें कि ग्लूटेन फ्री डाइट पे ही स्टिक
1: स्टिक रहे.
0: करें. बच्चों को भी एजुकेट करें, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में बताएं, टीचर्स से संपर्क करें कि ये ऐसी है प्रॉब्लम इसको, तो आप केयरफुल रहें कि दूसरे का टिफिन नहीं खाए, क्योंकि बच्चे ललचा जाते हैं ना, कि
1: हाँ
0: ऑब्वियसली सामने वाले का
1: क्योंकि
0: टिफिन ज्यादा टेस्टी होता है हमेशा,
1: दूसरे
0: तो
1: की थाली में घी
0: घी
1: ज्यादा
0: ज्यादा होता
1: लगता
0: है.
1: है
0: अच्छा, फिर जब आपको पता है कि ये चीज मैं नहीं खा सकता तो वो चोरी छुपे खाने की फिर कोशिश
1: क्योंकि
0: करते हैं,
1: बच्चों को क्रेविंग होने लगती है कि
0: क्रेविंग
1: मेरे को
0: होने लगती
1: मना
0: है.
1: किया जा रहा है तो मुझे वो काम पहले करना
0: एग्जैक्टली
1: है, तो
0: एग्जैक्टली.
1: उसके लिए
0: उसके लिए
1: बच्चे.
0: स्कूल में भी एजुकेट अवेयर करें आप स्कूल वालों को कि हमारे बच्चे को ये है, तो थोड़ा सा टीचर्स
1: उस पे
0: एक्स्ट्रा,
1: फोकस,
0: हाँ, ध्यान
1: एक्स्ट्रा
0: देते
1: एफर्ट
0: हैं,
1: दे सके.
0: एक्स्ट्रा ध्यान दे
1: और
0: सके.
1: यही अगर किसी बड़े ने उसका गलती से सेवन कर लिया
0: उनके
1: है.
0: लिए भी रहेगा यही मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यही है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो. तो आइडियल कंडीशन बाय द बुक ये है कि आपको नहीं खाना चाहिए, पर कभी आपने खा लिया तो पानी खूब पिए और 24 घंटे तक जो भी आपका सिम्टम है उसके हिसाब से दवाई खा लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एक बार, एंड देन आप आगे ध्यान रखें कि ऐसा कंटामिनेशन आपकी डाइट में ना हो.
1: बात दवाई की तो अगर इसके अंदर अगर आपको एक बार ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है तो इसके अंदर कोई कंटिन्यूस आपकी दवाई हमेशा के लिए ऑन हो जाती है या इसके लिए कोई और प्रिकॉशन या कुछ?
0: देखिए, सीलिएक डिजीज की एक ही दवाई

0: है ग्लूटेन फ्री डायट।
1: ओके, इसका
0: हाँ,
1: कोई
0: इसके लिए
1: मेडिसिन
0: कोई
1: ट्रीटमेंट
0: मेडिसिन
1: नहीं
0: हमारे
1: है?
0: पास अभी तक नहीं है। आप वो मेडिसिन खा लें और फिर आप अगर गेहूं भी खा लें तो सब ठीक रहेगा, वो नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो ये एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है वो बॉडी एंजाइम ही नहीं बना रही। तो इस बीमारी का एक ही इलाज है, ग्लूटेन फ्री डाइट। आपको हमेशा वैसा ही आहार खाना है जिसमें ग्लूटेन ना
1: नहीं
0: जाए।
1: है। उस पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए?
0: देखिए, अगर मैं आपसे बात सिंपल भाषा में कहूं तो हमारे पास जो खाने वाली लिस्ट है वो लंबी है और जो नहीं खाने वाली लिस्ट है वो छोटी है, क्योंकि नहीं खाने वाली लिस्ट में दो ही चीज आती है, गेहूं, जौ, और तीसरी चीज होती है हींग, जो बाजार में डिब्बी वाली हींग मिलती
1: हाँ,
0: है। क्योंकि बाजार में जो प्रोसेस्ड डिब्बी वाली हींग मिल रही है आपको, उनमें सब में गेहूं का आटा मिलाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो इसलिए नहीं खानी होती। कई बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो अदरवाइज एक ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं, पर जस्ट छोंक में इतनी सी हींग, क्योंकि हींग तो चुटकी भर
1: हाँ,
0: ही डालते
1: चुटकी भर
0: हैं,
1: डालते हैं।
0: उससे भी वो लोग सेंसिटिव होते हैं। उतना सा मतलब जो गेहूं जा रहा है उससे भी सेंसिटिव होंगे। तो खाना आप गेहूं, मैदा, सूजी, जौ, इनका दलिया, इनसे बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, पास्ता, मैगी वगैरह, ये सब, केक, पेस्ट्री जो बाजार में जनरली मिलती हैं वो सब, और हींग, जिनमें भी हींग डलाओ, जैसे पापड़ है। अब यूं तो कह
1: हाँ
0: रहे हैं हम पापड़ दाल का बना हुआ होता है, पर
1: हाँ
0: उसका लेबल पढ़िए, उसमें लिखा, अगर हींग लिखा हुआ है तो आप वो पापड़
1: नहीं
0: नहीं यूज
1: इतने।
0: कर सकते। तो बेसिकली इसमें ये जानना तो जरूरी है कि क्या नहीं खाना है। बाकी आप दूध, दही, छाछ, इनसे बनी हुई चीजें, दूसरे धान जैसे चावल, मक्की, बाजरा, ज्वार, रागी, इन बेसन, सब प्रकार की दालें, इनकी कंडीशन एक ही होती है कि ये जो आटे पिसे हुए हैं ये ऐसी चक्की पे ना पिसे हुए हों जिसमें गेहूं प्रोसेस होता हो।
1: डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के मंच पे आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: देखिए, सिंपल मैं एक संदेश देना चाहती हूं कि अगर सबसे पहली बात, अगर आपके आसपास किसी को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरी बात, अगर ये पता चल गया है कि आपको सीलिएक डिजीज है तो आप एक किसी भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, अपना डाइट प्लान लिखवाएं कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते
1: जी
0: और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तीसरी चीज, जो भी चीज आप पैकेज्ड खरीद रहे हैं उसमें लेबल को जरूर पढ़ें कि उस लेबल पे क्या क्या है, क्योंकि आजकल गूगल पे ऐसा भी कोई इंग्रेडिएंट है जो आपको समझ नहीं है तो आप गूगल डाल करके डाल सकते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स है माल्टोडेक्सट्रिन, तो हमें नहीं पता माल्टोडेक्सट्रिन क्या है, लेमन को नहीं पता, तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, तो माल्टोडेक्सट्रिन जिसमें है वो आप नहीं ले सकते। और चौथी चीज, किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए, जिन भी जो क्लेम कर रहा है कि वो ग्लूटेन फ्री सामान बनाता है उनकी लैब रिपोर्ट्स चेक करें, उनके सामान को टेस्ट करें, अगर आपको उनसे एलर्जी होती है तो उसका सेवन बंद करें। तो आप इसमें बेसिकली ये है कि सजग रहें तो आपको कम नुकसान आपकी आंतों को होगा, तो आप स्वस्थ रह पाएंगे।
1: डॉक्टर नमिता जी, आप जोधपुर आकाशवाणी केंद्र पधारे, हमारा और हमारे श्रोताओं का आपने इतना सुंदर मार्गदर्शन किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: थैंक यू जोधपुर आकाशवाणी केंद्र की, आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया कि हम लोगों से रूबरू हो सकें। थैंक यू सो मच।
2: सखियो, सीलिएक रोग कोई साधारण पेट की समस्या नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें सही समय पर यदि पहचान मिले और उचित आहार मिले तो जीवन को स्वस्थ और सामान्य हम बना सकते हैं। इसलिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। सीलिएक रोग इस विषय पर अभी आपने भेंट वार्ता सुनी डॉक्टर नमिता भंडारी से, और बातचीत की थी पूर्णिमा जैन ने।

0: पूर्णिमा 100 ग्राम जिंदगी है ना, कितना अजीब लगता है ना, इतनी सी जिंदगी, लेकिन हम लोगों ने ना कितना लोड डाल रखा है अपनी लाइफ पे।
1: और इस लोड में ना खुशबू, हम कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा भोजन का ध्यान रखते हैं, हमारे हम एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, हम हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस सेहत, इन एक्सरसाइज, खाना और जिंदगी, जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हम हमारी जो नींद है उसको इग्नोर कर देते हैं।
0: और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है
1: हाँ
0: ना सखियों। हमारी साथ अक्सर ऐसा होता है कि आज हम कुछ देखते हैं ना ऐसा, तो हमें लगता है कि नहीं अब कल से हम लोग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन नींद नींद जो होती है ना, वो हम अक्सर उसको नकार देते हैं कि नहीं हाँ आज 1 घंटा लेट सो जाते हैं, 1 घंटा लेट उठ जाते हैं, तो ऐसे में पूरा रूटीन बिगड़ जाता
1: और
0: है।
1: हम ये सोचते कि यार हम 1 घंटा लेट उठेंगे तो हमारा ये काम जो है वो पेंडिंग रह जाएगा। हम पहले से ही उसको ना इमेजिन कर लेते हैं, वो हम ये नहीं सोचते कि एक बार ट्राई करके देखते, कि 1 घंटा लेट उठ के देखते
0: पूर्णिमा
1: कितना लेट होगा।
0: ये पता है एक्चुअल में होता है, और स्पेशली हम जैसी वर्किंग वुमेन्स के लिए तो ऐसा होता है ना कि हम लोगों को रात में नींद में भी कभी कभी ख्याल आते हैं कि यार नहीं सुबह ये करना है और ये सारे काम करके हमें जाना है, तो ऐसे में हमारी नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है।
1: और वो हमारे एक्चुअली क्या अनसबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि ना हमें अगर 4 बजे उठना है तो हम 3 बजे ही उठ जाएंगे, और वो 3 का 4 का जो टाइम है वो हमें वापस नींद भी नहीं आती है। तो
0: हाँ
1: जो शेड्यूल्ड टाइम था हम उससे पहले उठ गए, हमारी नींद अधूरी रह गई, पूरा दिन हमारा थकावा रहता है, पूरे दिन हमारी जो एनर्जी लेवल है वो एकदम डाउन चला जाता है।
0: यानी कि कहीं ना कहीं जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, वो हमारी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, और अगर हम सही स्लीपिंग पैटर्न को अपनाएं तो इससे हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती है।
1: और एक स्वस्थ जो शरीर है उसके लिए जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही नहीं है, हमें पहला जो नियम है जो हमारी नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है, रोज़ाना लगभग एक समय पर हमें सोना चाहिए और एक ही समय पर हमें उठना चाहिए। हमें एक फिक्स शेड्यूल बना लेना चाहिए कि हमें 11 बजे सोना है या 10 बजे सोना है, तो 10 बजे ही सोना है।
0: और पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है पूर्णिमा, कि हमारी जो बॉडी है उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं, तो वो भी बैलेंस रहती है ना, अगर हम उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हमारी नींद भी बेहतर होगी और हमारी उस नींद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो ऐसा माना जाता है कि सोने से कम 1 घंटा पहले, क्योंकि आजकल तो डिजिटल एरा चल रहा है, तो ऐसे में मोबाइल लैपटॉप हम सभी यूज़ में लेते हैं, तो अगर आपको अपनी नींद अच्छी करनी है तो 1 घंटा पहले आप इन सभी से स्विच ऑफ कर लें, और अगर अच्छी नहीं

0: इन द रियल में चाहिए तो सोने से पहले आप कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दे।
1: आप हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आप गहरी सांस और लेना और छोड़ने का
0: मेडिटेशन
1: मेडिटेशन का
0: जी।
1: अनुभव भी कर सकते हैं, तो ये हमें हमारी जो नींद है उसको बेहतर करने में सहयोग करता है।
0: और अक्सर काफी सारे लोगों का ना एक ये पैटर्न होता है कि सोने से पहले उन्हें चाय कॉफी कोई ना कोई ड्रिंक चाहिए
1: हाँ
0: होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारी नींद पे, तो ये भी हम लोगों को यूज में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।
1: और हमारी जो अच्छी नींद है वो हमारी जो स्वस्थ जीवन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम अपनी नींद का सम्मान करेंगे तो हमारा शरीर और हमारा मन उसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं हमारी नींद की और हमारे स्वास्थ्य की, तो हमारी नींद हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सखी अपनी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए और अपने जीवन में एक स्लीपिंग पैटर्न को डेवलप कीजिए जिससे आप एक स्वस्थ नींद ले सकें।

0: खुशबू, ये जो हमारा नेचर है ना, उसके पास हमारी बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनका हमारा समाधान है वो छुपा होता है। जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हम हमारे घर में पेड़ लगाते हैं,
1: जी
0: वो केवल वातावरण को सुंदर नहीं बनाते बल्कि हमारी मानसिक शांति और हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं।
1: यानी पूर्णिमा, आप ये कहना चाहते हैं कि नेचर के पास में एक जादुई ट्रिक होती है हमें सुलाने की, है ना?
0: हाँ, और कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें उनको देख के सुकून और शांति मिलती है, जैसे हमें नींद भी अच्छी आती है।
1: और ये तो मैंने भी ट्राई किया है पूर्णिमा, कि काफी बार हम लोग जब वॉक पे निकलते हैं ना, तो एक प्लांट आता है रात की रानी, है ना? उसकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी होती है, इतनी सूदिंग होती है ना, कि जिस दिन वो खुशबू दिल दिमाग में उतर जाती है ना, उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है।
0: और ऐसा ही होता है स्नेक प्लांट, जो कि रात में ऑक्सीजन छोड़ता है और जिससे कमरे की हवा जो है वो बेहतर बनती है और नींद के अंदर भी गुणवत्ता का सुधार करती है।
1: तो सखियो, यहाँ पे पूर्णिमा ने एक प्लांट का नाम तो बता दिया है, और अगली प्लांट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप अपने घर में लगाती हैं तो उससे आप तनाव तो कम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ नींद को भी सुधार सकते हैं। और ऐसे में अगला जो प्लांट है वो है लेवेंडर का। जी हाँ सखियो, लेवेंडर का जो प्लांट होता है ना, वो अपनी सुगंध के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और इसकी जो खुशबू है वो मन को शांत करती है, साथ ही साथ स्ट्रेस को भी कम करती है, जिससे नींद लेने में बहुत आसानी मिलती है।
0: और एक लोग बहुत फेमस जो पौधा है वो है एलोवेरा, जो कि ना बहुत हवा को शुद्ध करता है और घर में रखने से वातावरण ताज़ा महसूस करवाता है।
1: ये तो सभी लोगों
0: हाँ,
1: के
0: और
1: घर पे
0: काफ़ी
1: होता है
0: सारे घरों में तो उगाया जाता है, उसे खाया भी जाता है।
1: जी। और एलोवेरा का प्लांट ऐसा है ना पूर्णिमा, जो स्किन के लिए भी अच्छा होता है, जैसे
0: हाँ
1: आपने बताया खाने के लिए भी होता है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एलोवेरा के। नेक्स्ट प्लांट है सखियों जैस्मिन का, यानी चमेली का पौधा, और स्पेशली इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत बहुत स्पेशल होती है, और ऐसा माना जाता है कि जो इसकी खुशबू है ना, वो आरामदायक नींद को लाने में बहुत हेल्पफुल होती है।
0: और अगर हम बात करें एक अगले पौधे की, तो वो औषधीय गुणों के साथ साथ हमें जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का वातावरण भी देता है और वातावरण भी देता है, और वो है तुलसी का पौधा, जो कि हम चाय के अंदर भी डालते हैं, तो हमें चाय भी बहुत अच्छी लगती है उसकी, और हमारे जो शरीर है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है वो।
1: बेनिफिशियल होता है, साथ में इन्फेक्शन जितने भी होते हैं ना, जैसे काफी लोगों को होता है कि भाई नाइट में ये प्रॉब्लम रहती है कि लंग्स से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन रहता है जो नाइट में सक्रिय हो जाता है काफी, तो उससे भी नींद लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो ऐसे में तुलसी का सेवन अगर किया जाए तो नींद की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा हम सुधार कर सकते हैं।
0: और ये छोटे छोटे पौधे हैं जो हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव ला सकते हैं, और अगर हम घर के अंदर जो अच्छा वातावरण चाहते हैं और स्वच्छ हवा चाहते हैं और अच्छा मन चाहते हैं, तो हमें इन पौधों को हमारे घर में उगाना चाहिए, हमारे इंडोर प्लांट्स की तरह हमारे घर में रखना भी चाहिए।
1: ये तो थी प्लांट्स की बात, लेकिन पूर्णिमा आपको पता है ना कि हम

0: हम लोग जो नींद लेते हैं उसका भी एक तरीका होता है कि कितने घंटे हमें सोना है।
1: हाँ, क्योंकि ये सोना, अगर हम कम सोते हैं तो सब कुछ हमारे जो नेक्स्ट डे का जो दिनचर्या है वो पूरा बिगड़ सा जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक पैटर्न, एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि हमें इतने घंटे की नींद लेनी चाहिए।
0: यानी कि हर उम्र के लोगों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है, ये भी हम सखियों से डिस्कस करें।
1: हाँ, करेंगे ना।
0: लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पहले हम हमारी सखियों को सुनाएं ये गीत, और उसके बाद में हम उन्हें और जानकारी देते हैं कि किस उम्र के लोगों को कितनी नींद की जरूरत होती है।

0: आंखों में नींदी, नींदों में सपने और सपनों में बातें तेरी मेरी। क्या बात है ना, क्या सॉन्ग है पूर्णिमा। और देखिए सपनों में भी ना कई बार हम खूब सारी बातें कर लेते।
1: हाँ, सपने होते हैं और हम सुबह उठ के सोचते हैं, अच्छा ये हमने सोचा था और ये सही में हो रहा है।
0: एग्जैक्टली काफी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो नींद में देख रहे होते हैं ना, सपने में जो हम लोग कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली नेक्स्ट डे हमारे साथ होता है।
1: क्योंकि हम वो हमारे दिमाग में वही चीज चल रही हो कि कल हमें ये करना है या कल ऐसा हो सकता है या कल ऐसा होना है, तो वही हमारे दिमाग में चलता है और वही शायद नेक्स्ट डे वैसा ही होना होता है।
0: और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारी नींद का पैटर्न बिगाड़ देते हैं।
1: हाँ, और नींद का जो पैटर्न होता है ना खुशबू, वो हर एज पे अलग अलग होता है। अगर जैसे नया मतलब बच्चा बॉर्न हुआ है, कोई नवजात शिशु है, तो उसे 14 से 17 घंटे की नींद उसके लिए बहुत जरूरी होती है, जिससे कि ना वो बाहर और अंदर का जो उसका एटमोसफेयर था उसके अंदर खुद को एडजस्ट कर पाए।
0: हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो बहुत लंबी नींद सोता है। तो मैंने भी एक दो बार ऐसा देखा था जब

0: खुद के घर में ऐसा होना तो पता चला कि ये बहुत एसेंशियल होता है कि 14 से 17 घंटे की नींद एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है नवजात शिशु के लिए, क्योंकि उसी दौरान उसकी शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है ना, वो हो रहा होता है।
1: और यही नहीं, अगर जब स्कूल बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसको 9 से 12 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब उसका वो अपने ध्यान से सीखने का जो उसकी जो क्षमता है, ऊर्जा है, वो सारी बनी रहे। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होनी होती चली जाएगी। इसलिए उनके डेवलपमेंट के लिए उनकी नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
0: बिल्कुल, और एडल्ट एज की हम बात करते हैं ना, तो उसके लिए 7 से 9 घंटे की नींद जो है वो आदर्श मानी जाती है, क्योंकि एडल्ट एज के अंदर बहुत सारा हम लोग हमारी बॉडी पे ना लोड ला देते हैं कि भाई हमें ये भी करना है, स्ट्रेस भी रहता है जॉब का, स्टडी का। तो ऐसे में ये हम ज़रूर तय करें कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर पूरी हो।
1: और चाहे उम्र कोई भी हो, पर्याप्त नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, और
0: एग्जैक्टली
1: यह हमारे शरीर को वापस एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही हमारे मानसिक संतुलन भी बनाए रखती है।
0: और मानसिक संतुलन के साथ साथ ना पूर्णिमा, हमारी ऐसा माना जाता है कि पुरातन वेदों में कहा जाता है कि जो आत्मा होती है ना, आत्मा की शांति के लिए भी नींद बहुत जरूरी है। नींद में अगर आप सोते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपकी जो आत्मा है वो कहाँ है और किस और है, किस दुनिया में है। तो ऐसे में जो नींद होती है ना, वो हमारी आत्मा को भी कहीं ना कहीं सुकून देती है।
1: इसलिए आप अच्छी से नींद पूरी पर्याप्त नींद लीजिए और खुद को आराम से सेहतमंद रखिए।

0: है प्रेम, संवाद, अनुशासन और पर्याप्त नींद और आराम। जी हाँ, इसी विषय पर हमने बात की थी आज हमारी इस नारी वाचिका में। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ खुशबू।
1: मैं पूर्णिमा,
0: जी हाँ, और हमारे साथ एचपीटी पर बनी थी प्रवीण कुमार और पीके सेन। साथ ही कंट्रोल रूम से हमारे साथ बनी थी विक्रम सिंह भाटी। कंसोल से आप तक प्यारी प्यारी सॉन्ग सुनाए थे कल्याण सिंह भाटी ने। और अब लेते

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन

0: पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजनाएं शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और

0: 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक

0: गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेडके जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजी जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार

0: जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहां के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी
1: जहां तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है।
1: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
0: जी
1: वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
0: जी
1: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. It goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
6: जी वही।
4: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती है।
6: जैसे
5: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
6: भरत?
4: भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
6: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
5: हाँ।
6: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
6: अच्छा।
5: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
4: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
5: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
6: वो क्या सर?

0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
1: है ही नहीं?
0: हाँ।
1: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
1: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
1: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ।
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ।
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द

0: हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान,
0: बिल्कुल सही,
1: बलूचिस्तान,
0: सही,
1: तुर्किस्तान,
0: बिल्कुल, और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा,
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
2: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ सबके साथ।
3: तो साथियों कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
4: भारत अर्थात इंडिया।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
6: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
7: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
8: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
9: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
10: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
9: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
10: हाँ पूछो बेटा।
9: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
10: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
9: लेकिन माँ,
10: ओफो तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
9: जी
10: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
9: अच्छा माँ, ये लो माँ।
10: ला।
8: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
9: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
10: क्या मिल गया
9: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
10: क्या मिल गया? क्या मिल गया
9: मुझे? मिल गया।
8: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
10: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
9: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
8: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
9: स्टीफन स्टीफन माँ माँ माँ सर, इस कमरे के धुएं को देखो।
10: धुआं?
9: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ? इसमें इसमें क्या उड़ रहा है?

0: बताओ
1: क्या हो रहा है,
0: बताओ
1: क्या हो
0: उसमें
1: रहा
0: क्या
1: है?
0: हो रहा है?
1: कुछ भी तो नहीं,
2: कुछ भी तो नहीं है।
0: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
1: राख?
0: हाँ, उड़ रही है ना।
2: हाँ वो तो है, मगर
0: इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
2: हाँ
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
2: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते
0: ठीक
2: हैं,
0: है, आओ
2: चलो
0: मेरे
2: चलो।
0: साथ।
1: अरे सुनो,
0: हम देखते हैं।
1: अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे
5: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
4: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
4: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
4: आओ यही ठीक रहेगा, आओ चलो।
6: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब जरा हट जाइए।
4: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते।
6: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
4: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
6: अरे अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
4: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
6: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, हाँ स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
4: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
6: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है।
4: कमाल कर दिया बच्चों ने।
6: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
4: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
6: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
6: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
4: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
6: अरे
4: देखो,
6: अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ, अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया, अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद

0: यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: कमाल कर दिया। और
1: हाँ बोलो बोलो
0: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
0: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
0: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
0: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
0: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
0: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
0: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
1: हाँ।
0: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारत वर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
0: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
1: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
0: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू,
1: हिंदू। शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम

0: पढ़ते हैं, वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ,
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओह।
0: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात

0: at India.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
2: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
3: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
4: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
5: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
6: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
5: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
6: हाँ पूछो बेटा।
5: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
6: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
5: लेकिन माँ,
6: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
5: जी
6: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
5: अच्छा माँ, ये लो माँ।
6: ला।
4: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
5: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
6: क्या मिल गया
5: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
6: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
5: मुझे मिल गया।
4: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
6: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
5: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
4: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
5: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
6: कुछ भी तो नहीं।
4: कुछ भी तो नहीं है।
5: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
4: वो तो है मगर
5: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
5: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
4: हाँ
5: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
5: ठीक है, आओ मेरे साथ।
6: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था, दोनों भाई एक

0: बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे अरे
2: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
3: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
2: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
3: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
2: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
3: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
2: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
1: भाई साहब आ जाइए।
3: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
2: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
3: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
2: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
3: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
2: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
3: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
2: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर क्यों जा रहा है?
3: कमाल कर दिया
2: भाई। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
3: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
2: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
2: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
3: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
2: अरे
3: देखो,
2: अरे हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101

0: हाँ जी, स्वागत है आपका आज एक फिर नई शाम और एक नई मज़ेदार सी बातें, नई मज़ेदार सी प्लेलिस्ट लेकर। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें। गुरुवार का दिन स्पेशल डे है, म्यूज़िकल कहानी आने वाली है और बहुत सारी बातें हैं। इस आवाज़ का नाम राहुल और प्रोग्राम इवाणी में आज मेरे साथ हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज की रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। जैसे कि राहुल ने कहा, बहुत सारा मजा आने वाला है आज हमारे युवाणी में। और आज की प्लेलिस्ट भी राहुल बड़ी कमाल की, बहुत ही चटपटी है। तो आज जो है, आज का दिन अगर अभी तक बोरिंग रहा है, तो ये मैं पक्का बोल सकती हूँ कि अब जो ये गाने की प्लेलिस्ट बजेगी ना, उससे आपका दिन जो है अच्छा हो ही जाएगा। तो क्यों ना आज का पहला गाना चला दिया
0: बिल्कुल,
1: जाए।
0: बिना किसी देरी के आज की शाम को शुरुआत करते हैं और बजाते हैं आपके लिए आज की शाम का पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: राहुल, तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारा दिल सच में बोल पाता तो वो क्या कहता?
1: क्या कहता?
0: शायद वो बहुत सारी बातें कह देता जो हम कभी किसी से नहीं कह पाते। पता है वो क्या कहता? दिल शायद ये कहता, तुम मुझे हर बार चुप क्यों करा देते हो? जब रोना होता है तब मुस्कुराने के लिए क्यों कहते हो? जिसे भूलना चाहिए उसी के पीछे क्यों भागते हो? दिल शायद ये भी कहता, मैं हर बार टूटता हूँ और तुम मुझे हर बार कहते हो मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों? तुम लोगों को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में आने देते हो जब पता है कि वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और शायद दिल ये भी कहता, तुम्हें पता है तुम किससे प्यार करते हो, फिर भी खुद से झूठ क्यों बोलते हो? तुम स्ट्रांग बनने के चक्कर में खुद को वीक क्यों महसूस कराते हो? दिल शायद ये चाहता, बस एक बार मुझे जैसा हूं उसे रहने दो। हर बार लॉजिक मत लगाओ, कभी कभी मुझे फील करने दो। शायद अगर दिल बोल पाता तो वो हमें बदल देता, क्योंकि वो हमें वो सच्चाई दिखाता जिससे हम हमेशा भागते हैं। क्यों राहुल?

0: क्या बात है जी, क्या बात है। इस बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम युवाणी को। इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इन आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज की रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। वैसे
0: जी हाँ बिल्कुल, आज बातें और भी बहुत कुछ खास होने वाली है। और एज वी नो, जैसे कि हम सभी को पता है, गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन जो है वो म्यूजिकल कहानी जरूर हाजिर होती है। तो विनीता, हो जाए आज की कहानी।
1: जी हाँ दोस्तों, आज वैसे भी स्पेशल डे है और हम आपके लिए हर गुरुवार को लेकर आते हैं एक प्यारी सी स्टोरी जो कि मोटिवेशनल होती है। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक गांव के लड़के की। दोस्तों, एक लड़का था जो हर काम में देर करता था। पढ़ाई हो, नौकरी हो या फिर कोई भी मौका, वो हमेशा सोचता था कि कल से शुरू करूँगा। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक घड़ी दी और कहा, बेटा जिंदगी में सबसे महंगी चीज़ पैसा नहीं, समय होता है। लड़के ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ साल बाद एक अच्छी नौकरी के इंटरव्यू के लिए वो लड़का गया और वो उस इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंचा था। तब तक इंटरव्यू भी ख़त्म हो चुका था और ये मौका उस लड़के के हाथ से निकल गया। उस दिन उसे दादाजी की वो बात याद आई। उसने फैसला किया कि अब वो समय की कद्र करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदली, मेहनत की और कुछ सालों बाद ही अपनी एक सफल कंपनी भी खड़ी कर दी। जब वो सफल हुआ वो लड़का, तो उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, क्या कारण है कि आप सफल हुए। उसने कहा, मैं सफल उस दिन नहीं हुआ जब मेरी कंपनी बनी, मैं सफल उस दिन हुआ जब मैंने समय की कीमत जानी। तो दोस्तों, आप भी समय की कीमत जानिए और जो आपका काम आज का काम है वो अभी कीजिए, आज ही के दिन कीजिए, उसे कल पर ना टालिए। क्योंकि कल पर हम टालते हैं तो हो सकता है कि वो मौका हमारे हाथ से छूट जाए और वो मौका जो है हमें दोबारा ना मिले। तो हमेशा वक्त की कद्र ज़रूर कीजिए। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं इस अगले म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

क्या बात है जी, क्या बात है। बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक आप फिलहाल इंजॉय कर रहे थे इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल। और भैया देखो, बात अगर प्रोग्राम युवाणी में चल रही है क्रिकेट की, तो मतलब क्रिकेट के लिए इंडिया की बात कैसे ना हो। टीम इंडिया का जो है वो न्यूजीलैंड का दौरा अब फाइनल हो चुका है। 5 T20 मैच, 5 ODI मैच और 2 टेस्ट मैच जो कि है न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंडिया के अब फिक्स हो चुके हैं। टोटल 12 मैच इंडिया खेलने वाली है न्यूजीलैंड के साथ। और ये कब शुरू होने वाले हैं आपको बता देता हूँ। 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जो है वो 5 T20 मुकाबले होंगे। उसके बाद 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 5 ODI यानी वनडे मैच इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाला है। और बचे 2 टेस्ट मैच जो है वो 19 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच खेले जाएंगे। तो ये थी इंडिया का जो दौरा न्यूजीलैंड का होने वाला है, उसकी पूरी डिटेल अभी बहुत दूर है। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो विराट कोहली के स्पेशली बहुत अच्छे और बहुत क्लोज वन फैन है, उनके लिए एक थोड़ी सी दुख खबर है, सैड न्यूज़ है। वो क्या है बताते हैं आपको इस छोटे से म्यूजिकल ट्रैक के बाद। वेल, 10th क्लास हमारी लाइफ में कैसा फेज होता है ना, कि उस दौरान हम ये चूज करते हैं कि भैया हमें किस फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, उस अकॉर्डिंग फिर हम

से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: वेलकम है जी आप सभी का. अभी चल रहे हैं युवाणी और आप सुन रहे हैं FM 102.1. मेरे यानी विनीता और मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल इस आवाज का नाम राहुल.
0: ये जो ट्रैक चल रहा था राहुल, क्या एनर्जेटिक ट्रैक था और कितना प्यारा ट्रैक था. मतलब फीलिंग्स ही फीलिंग्स है इस गाने में.
1: और फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो फीलिंग्स जो है हमारे विराट कोहली के साथ भी हजारों लाखों करोड़ों फैंस की जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार उनको अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज खेलने वाला है इंडिया, उसमें जो है विराट कोहली को आप हम सभी मिस करने वाले हैं. आईपीएल में जो धुआंधार मज़ेदार और क्या खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली विराट कोहली की, वो अब जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें नहीं खेल पाएंगे. क्यों? क्योंकि विराट कोहली हैमस्ट्रिंग यानी जांघ के पिछले हिस्से की मसल्स की चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. और ये जो सीरीज़ है 13 जून से धर्मशाला में हो रही है. 3 मैचों की सीरीज़ में विराट कोहली नहीं खेल पाएंगे. और इनकी जो परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आईपीएल 2026 के फाइनल में जो है वो इनको चोट लगी थी और इसलिए जो है वो अब अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज़ में ये नहीं खेल पाएंगे फिलहाल के लिए. और इनको जो है 2 हफ्ते की रेस्ट के लिए बताया गया, तो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं देखेंगे, लेकिन आने वाले और जो मुकाबले ओडीआई सीरीज़ जो होने वाली है इंडिया की, उसमें बेशक आप विराट कोहली को फिर से दोबारा मैदान पर उतरता हुआ देखेंगे. फिलहाल के लिए आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने जैसे कि ये वाला.

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे IIT JEE एडवांस 2026 परीक्षा में 14th रैंक प्राप्त प्रिंस चौधरी से राहुल की फोन आउट बातचीत।
6: वेल, 10th क्लास हमारे लाइफ में कैसा फेज होता है ना, कि उस दौरान हम ये चूज करते कि भैया हमें किस फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, उस अकॉर्डिंग फिर हम अपना फ्यूचर उस फील्ड में देखते हैं कि भैया इस परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके बाद हमें ये काम बड़ा करना है इस फील्ड में आकर। बात करते हैं आज प्रिंस चौधरी की 10वीं कक्षा

0: के बाद साइंस मैथ लेने का डिसीजन लिया और उसके बाद आज आईआईटी जेईई एडवांस 2026 परीक्षा में इन्होंने 14th रैंक हासिल करी है और हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
1: पिपार सिटी जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी तैयारी कोटा से की है, जहाँ मैं 10th क्लास में आया था। मेरे 12th बोर्ड में 97.2% और मेरी जेई एडवांस 2026 में AIR 14 आई है।
0: प्रिंस, कोटा कब जाना हुआ और फिर ये रैंक आई तब, मतलब पहला क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का?
1: कोटा में 10th क्लास में आया था और रिजल्ट देखने के बाद सब लोग काफी खुश थे और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रैंक आई, इसलिए काफी खुश थे।
0: मतलब आपको एक्सपेक्टेड था कि इतनी रैंक आ जाएगी, आपके लिए कोई सरप्राइजिंग मोमेंट तो नहीं था या फिर पहले से टारगेटेड था कि यार ये रैंक तो आनी है, इस लेवल की मेरी तैयारी हो रखी है?
1: तो मैं टॉप 100 की उम्मीद कर रहा था, पर 14 आई तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मान सकते।
0: क्या बात है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ज्यादा है। 14th रैंक आप अगर कह रहे हैं तो 14th रैंक अपने आप में मायने रखती है और इस रैंक के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं चाहूंगा स्पेशली जो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ना आप अपना एक बेसिक रूटीन जो इस परीक्षा में आप तैयारी करते थे तो क्या रहता था, उसके बारे में बताओ ब्रीफ में एक बार।
1: मतलब रूटीन तो मेरे ऐसे कोई फिक्स नहीं था, मैं फ्लेक्सिबल रूटीन रखता था कि कभी मान लो पढ़ाई में ज्यादा लोड पड़ रहा है तो कहीं से टाइम निकाल के पढ़ना। बाकी घंटों के हिसाब से तो नहीं पढ़ता था मैं डेली टारगेट फिक्स करता था कि मेरे को आज इस सब्जेक्ट में इतना कवर करना है, तो मैं भले ही रात को लेट हो जाए पर वो पूरा करके सोता था।
0: प्रिंस, हर स्टूडेंट की है ना एक अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, उसकी अपनी अपनी अलग अलग एक वीकनेसेस होती है। तो आपको क्या लगता था कि यार मेरी इस सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छी है, इसमें मुझे थोड़ा और काम करने की जरूरत है, तो किस तरह से आपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग किया? आपकी एक्सपर्टीज और वीकनेसेस के बारे में बताइए।
1: मेरे स्ट्रेंथ तो मैथ्स में थी स्टार्टिंग से, बचपन से मेरे को नंबर्स से काफी लगाव था तो मैथ्स में मेरे को क्वेश्चन करने में मजा आता था। और वीकनेस तो मेरी केमिस्ट्री थी, क्योंकि स्टार्टिंग 11th में भी केमिस्ट्री में दिक्कत आती थी, पर टीचर्स ने काफी हेल्प की और उससे कवर हो गया।
0: ओके, जब भी हम किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं प्रिंस, तो ऐसा होता है कि हमारे लिए, हमें हर वक्त ये लगता है कि यार मुझे टाइम बहुत कम पड़ रहा है, यार इस टाइम में इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी, इतना सारा सिलेबस कवर कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने वो बखूबी निभाया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना और उसमें अपना अच्छा एक स्कोर करना, इसके बारे में क्या बताओगे, ये किस तरह से मैनेज करते थे आप?
1: मतलब मैंने 11th के स्टार्टिंग से ही लग गया था क्योंकि मुझे पता था सिलेबस काफी ज्यादा है और 2 साल में कवर भी करने हैं, तो डेली के मैं फिक्स करता था जैसे उन्हें टारगेट्स कि जैसे क्लास में जो पढ़ाया है वो घर आके रिवाइज करना है और जो क्वेश्चंस हैं जो एडवांस के PYQ भी लगाने हैं। तो दिन के मैं टारगेट फिक्स करता था और वो टारगेट फिक्स करते करते मेरे 2 साल में सिलेबस आराम से कवर हो गया।
0: एक और चीज होती है ना कि यार कोई भी परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा की एक जो मॉक टेस्ट की आदत होती है एक स्टूडेंट की, वो होना बहुत जरूरी है। तो वो मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस है, उसकी इंपॉर्टेंस है और उसके बेनिफिट्स है, जो किस तरह से आपको आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं, उसके बारे में क्या बताओगे?
1: जे एडवांस के एग्जाम में जो पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न, वो हर साल चेंज होता है, तो आपको अलग अलग पैटर्न के आइडियाज होने चाहिए, तो उसके लिए मॉक टेस्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि मेन चीज रहती है कि PCM तीनों सब्जेक्ट है उसमें आप कितना टाइम डिवाइड कर रहे हो, तो वो मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस होती है और मैं लगातार मॉक टेस्ट देता रहता था। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें मार्क्स कम आया ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने उसका कितना अच्छी तरह एनालिसिस किया, आपने अपनी गलतियों को पहचाना और उस पर काम करके अगले मॉक टेस्ट में इम्प्रूव किया, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आप अपनी गलतियों को पहचाने। मैं अगला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी अगर वो गलती कर रहा है तो वो उसे रिकॉग्नाइज कैसे कर सकता है? आपने कैसे की अपनी गलती को रिकॉग्नाइज?
1: जैसे मैं मॉक टेस्ट हमारा 3 घंटे का होता है, तो उसके एनालिसिस में मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा आराम से देता था कि मैंने इस क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है इससे मैंने एग्जाम के टाइम क्या सोचा, कि फिर मैं उसको क्लासिफाई करता था कि ये सिली मिस्टेक है या मुझे ये चीज याद ही नहीं थी या फिर कोई ऐसी चीज है जो मैं लैक ऑफ अटेंशन कह सकते हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वो। तो अगर मैं दो कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है कि मेरे को ये आता ही नहीं था, तो मैं उसको नोट करता था कि भाई ये टॉपिक मेरा रिविजन वापस रिविजन करना है। और जो सिली मिस्टेक होती थी उस पर मैं यही देखता था कि मैं एग्जाम के टाइम क्या सोच रहा था कि इसमें रीडिंग मिस्टेक हो गई क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ऑप्शन ढंग वो नोट डाउन कर लेता था ताकि मैं अगले टेस्ट से पहले उसको एक बार देख लूं कि मैं इस चीजों में।
0: ओके प्रिंस, जब भी परीक्षा की तैयारी होती है तो हर

0: टाइम एक अलग अलग फेज में गुजरता है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इस पूरी परीक्षा के फेज में आपका सबसे क्रूशियल टाइम आपको कौन सा लगा कि यार इस टाइम में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी।
1: क्रूशियल टाइम तो मैं कहूंगा हमारा जनवरी में जेईई मेंस एग्जाम हुआ था, उसके एक महीने पहले से हमारा मेन पढ़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि आगे जेईई मेंस था जनवरी में, फिर बोर्ड्स था फरवरी में, फिर जेईई मेंस सेशन 2 था अप्रैल स्टार्टिंग में, और फिर फाइनली 17 मई को जेईई एडवांस था। तो ये 4 से 5 महीने काफी क्रूशियल रहे, क्योंकि सिलेबस तो हो गया था, पर रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की थी जो इस टाइम मैंने की।
0: प्रिंस, मैं जानना चाहूंगा ये पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट आप अपनी लाइफ में किस तरह से देखते हैं।
1: मेरी जर्नी में पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा। मैं जब कोटा गया था तो पापा मम्मी के साथ ही रहा हूँ मैं 3 साल, तो कभी भी मेरे को जैसे एग्जाम में कम मार्क्स आ गए या कभी कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो कई बार ऐसे डिमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहे, तो उस समय पे मैं पेरेंट्स से बात करता था और वो काफी मोटिवेटेड रखते थे। और एकेडमिक्स में टीचर्स का काफी योगदान रहा, कोई भी मेरे को डाउट आए या टेस्ट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उनके साथ डिस्कस करता था कि मेरे क्या मिस्टेक्स हुए और उनको कैसे इम्प्रूव करो, और हाँ टीचर्स हमेशा तैयार रहते थे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और अगला सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे प्रिंस की, जब इतनी बड़ी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो एक लिमिटेड एडिशन हमारे लिए कई बार कम पड़ जाता है, क्योंकि उसमें आपने आपको NCERT भी पढ़नी पड़ती है और दूसरी बड़े बड़े राइटर्स की और भी किताबें पढ़नी पड़ती है, तो किताबों के बीच में आप सिलेक्शन किस तरह से देखते थे?
1: किताबों के बीच सिलेक्शन तो जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स और मैथ्स में जेईई एडवांस में NCERT से थोड़ा बाहर की चीजें आती है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन बुक्स देख सकते हैं। और बुक्स की चॉइस तो मैंने तो अपने फ्रेंड्स वगैरह या टीचर्स से ही गाइडेंस लेकर की थी। और NCERT का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री में होता है, क्योंकि मेन्स हो या एडवांस केमिस्ट्री उतना बाहर से नहीं आता, अगर आपकी NCERT पूरी तरह कवर्ड है तो आपकी केमिस्ट्री निकल जाती है आराम से।
0: ओके, मैं जानना चाहूंगा प्रिंस आपसे कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा लगता है मॉक टेस्ट के दौरान भी लग जाता होगा या फिर प्रिपरेशन के दौरान भी ऐसा लग जाता होगा, यार ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, बहुत हार्ड नजर आ रहा है, यार मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा भी या नहीं? तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या कुछ चीजें करते थे आप?
1: जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पेरेंट्स से हमेशा डिस्कस करता था और टीचर्स से भी करता था, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स को काफी एक्सपीरियंस होता है इन चीजों का, तो वो आपको अच्छे से मोटिवेटेड रख सकते हैं। बाकी मैं म्यूजिक सुनता था, मोटिवेशनल म्यूजिक, या बाहर कहीं वॉक पे चला गया ताकि माइंड रिलैक्स हो, क्योंकि अगर माइंड एग्जॉस्टेड है और कोई चीज नहीं हो रही है तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपसे वो नहीं होगा, तो माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है।
0: सोशल मीडिया से अपने आप को आपने किस तरह से दूर रखा?
1: जैसा कि मैंने बताया कि पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो मेरे केस में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई मुझे, क्योंकि अगर मैं कभी भी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने लगा तो पापा मम्मी रोक देते थे। और बाकी सोशल मीडिया अगर आप यूज करना चाहो तो टाइम लिमिट में रखो कि भाई 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स रील्स देखते हो तो वो 1-2 घंटे कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। बाकी अगर कोई सिर्फ हॉस्टल में रहता है तो उसको तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप कीपैड फोन रख लो, या फिर अगर आपको स्मार्टफोन रखना है तो आप अगर खुद से कंट्रोल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर मान लो कुछ बच्चों को होता है कि कंट्रोल नहीं होता, तो आप पेरेंटल लॉक लगा सकते हो कि आप कोई भी एक्टिविटी अपने फोन में कर रहे हो तो वो डायरेक्ट आपके पेरेंट्स को पता चल जाए, तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके कि आप तुम ज्यादा यूज कर रहे हो कम यूज करो वगैरह।
0: क्या बात है प्रिंस, देखो भाई 14th रैंक आ चुकी है, IIT में सिलेक्शन हो चुका है, तो क्या एक्सपेक्टेड है? आप ब्रांच कौन सी लेना चाहोगे और कौन सी IIT में जाना चाहोगे, आप क्या प्रेफरेंस रहेगी अपनी भैया?
1: वही IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेना चाहूंगा।
0: प्रिंस मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भैया जो लोग काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 10th के बाद जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और वो चाह रहे हैं अभी तक हमारा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो उनके लिए क्या कोई खास बात आप बताना चाहोगे? क्या देखो भैया हो जाएगा, कंसिस्टेंसी बना के रखो, आपकी शब्दों में क्या कुछ उनके लिए क्या बात होगी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है काफी लंबे टाइम से?
1: अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर आप काफी डिमोटिवेटेड हो जाएगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बाकी पेरेंट्स से बात करते रहिए कि क्या कमी रह रही है, या टीचर से डिस्कस करिए कि भाई क्यों मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, किस टॉपिक में मैं वीक हूँ, और गलती आइडेंटिफाई करिए और इम्प्रूव करते रहिए।
0: ओके प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलने वाले हैं आपके साथ, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? ओके डन। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स?
1: मैथ्स
0: सुबह पढ़ाई या फिर रात में पढ़ाई?
1: रात में पढ़े
0: फेवरेट आईआईटी?
1: IIT बॉम्बे।

0: ओके, ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस?
1: ऑफलाइन क्लासेस,
0: मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस शीट?
1: मॉक टेस्ट,
0: चाय या फिर कॉफी?
1: नन,
0: ओके, मोबाइल ऐप जो अभी तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी है आपने?
1: यूट्यूब,
0: स्ट्रेस जब आ जाता है तो सबसे पहली चीज क्या करते हो?
1: पेरेंट्स से बातचीत,
0: ओके, फेवरेट बुक?
1: अगाथा क्रिस्टी के डिटेक्टिव नॉवेल्स है वो मैं पढ़ता था पहले भी,
0: ओके, वन वर्ड फॉर जेईई प्रिपरेशन?
1: एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
0: और इंडिया रैंक 14 के पीछे का सबसे बड़ा कारण?
1: कंसिस्टेंसी,
0: क्या बात, एक संदेश फॉर जेईई एस्पिरेंट्स के लिए?
1: कीप कॉन्फिडेंस हाई।
0: क्या बात है, प्रिंस चौधरी हमारे साथ बने हुए थे, 14th रैंक इनकी आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में आई है। प्रिंस, जाते जाते आपका फेवरेट सॉन्ग बता दीजिए जो हम आज की इस प्लेलिस्ट में बजाते हैं आपके इंटरव्यू के बाद में, कोई भी फेवरेट
1: तो
0: सॉन्ग
1: मैं
0: आपका।
1: अभी रिसेंटली धुरंधर का जाइए सजना गाने,
0: क्या बात है, जाइए सजना बजा दें।
1: हाँ बजा दो, थैंक
0: ओके चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: यू।

दोस्तों, अभी आपने सुनी आईआईटी जेईई एडवांस 2026 परीक्षा में 14th रैंक प्राप्त प्रिंस चौधरी से राहुल की फोन आउट बातचीत, जिसकी परिकल्पना और संयोजन राजेश लामरोड द्वारा किया गया। सुनते हैं इसी बीच अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, आज की जो है सरकारी भर्ती हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए, हमारे यूथ के लिए। और भर्ती है RAS 2026 की, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जून 2026 इसकी डेट है, यानी कि आज ही के दिन इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इसकी हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी है 3 जुलाई 2026। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 29 नवंबर 2026 को RAS 2026 के एग्ज़ाम होने वाले हैं।
1: जी बिल्कुल। इस भर्ती के बारे में अगर और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो बता देता हूँ आपको, rpsc.rajasthan.gov। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 607 जो है टोटल पोस्ट हैं, जिसमें राजस्थान स्टेट सर्विसेज के लिए 192 पोस्ट और राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए जो है वो 415 पोस्ट रखी गई है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल सी है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ रिकग्नाइज बोर्ड। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। और फॉर मोर डिटेल एक वेबसाइट है जो कि है rpsc.rajasthan.gov। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम निवाणी में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं मजेदार से गाने, और अगला गाना ये आपकी नज़र ये रहा साहब।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के युववाणी प्रोग्राम में। और समय जो है चलता जा रहा है, और इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के बाद तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बयां करूं। और ये गाना जो है ना, शायद ही आप में से किसी ना किसी को पसंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गाना सबको ही पसंद होगा। फिलहाल जो है राहुल हमारे लिए एक और जानकारी लेके आए हैं, तो जानते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ बिल्कुल। देखो भैया, क्रिकेट का नशा अभी तक अच्छे से उतरा भी नहीं है, लेकिन और अब जो है अब फुटबॉल प्रेमियों के लिए उनका नशा अब चढ़ने ही वाला है। 11 तारीख से, 11 जून से जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत।

होने वाली। जी हाँ, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन जो है फीफा विश्व कप 2026 शुरू होने वाला, और इसमें खास बात हमारे लिए रहेगी कि भैया भारतीय मूल के 4 खिलाड़ी जो हैं वो इस बार आपको इसमें खेलते हुए नज़र आएंगे। साल 2026 में फ्रांस का जो है उसको फ्रांस को रिप्रेजेंट करने वाले विकास धौरासू के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, जहां तहसीन मोहम्मद जो कि कतर के लिए, निशान वेलुपिल्लई जो कि ऑस्ट्रेलिया, सरप्रीत सिंह जो कि न्यूजीलैंड, और सैमुअल मुतुसामी जो कि डीआर कांगो जो है वो इसमें खेलते हुए आपको नज़र आएंगे फीफा 2026 में। और ये जो खिलाड़ी हैं वो इनकी जड़ें जो हैं वो कुछ की केरल, तमिलनाडु और पंजाब से जुड़ी हुई हैं। तो भारतीय मूल से भी फीफा विश्व कप 2026 में इन 4 खिलाड़ियों को आप खेलते हुए देख सकेंगे। फिलहाल के लिए गानों का सिलसिला जारी है प्रोग्राम युवाणी में।

0: तो दोस्तों इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ ही अब हमें लेना पड़ेगा आपसे विदा। और हम तो रेडियो बड़ी साहब के साथ जुड़े हुए थे आज के प्रोग्राम में, मैं विनीता और मेरे साथ थे।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल और प्रोग्राम युवाणी का सफर अब यही होता है समाप्त। आज के कार्यक्रम का संयोजन रहा मनीष कुमार सोलंकी, प्रस्तुति रही राजेश लामरोड की, कंसोल पे हमारे साथ लिया खत्म। मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और नई जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित

0: न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरूआत केवल एक नए वाहन की शुरूआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण ये है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और अब एक नजर डालते हैं हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सवेरे 6:05 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का 17वां भाग। 6:15 पर होगा सुविचार के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा गणगौर दिन में 1:15 पर। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी होगा कल शाम 5 बजे और इसमें आप सुनेंगे प्रमुख अनुवांशिक एवं वृक्ष सुधार प्रभाग शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर से डॉक्टर दिशा मीणा की बातचीत। इनसे बातचीत करेंगे नैमी चंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए समूह सुर में देशगान।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्जुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रॉड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्ताम् कृतवान्। वयोवृत्तः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्पम् ईरान देशं विरुध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्राप्तिदः आगमनम्। अपि च गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः। वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानम्।

0: सांस्कृतिक सभ्यतागत सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपति भवने लाओस देशस्य उप प्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च थोंग सावन फोम विहाने इत्यमुं स्वागतं कुर्वन्ति। सा अवदत् यत् उभौ देशौ अस्मिन् वर्षे राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 70वां वर्ष समाचरतः। सा उक्तवती यत् व्यापार निवेशयोः क्षेत्रे सहयोग विस्तारस्य पर्याप्ताः अवसराः सन्ति। सूचना प्रविधि, स्वास्थ्यम्, कृषिः, सिंचनम्, विनिर्माणम्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनाय भारतं सज्जमस्ति। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू अद्य न्यगादीत् यत् शासन व्यवस्थां भद्रतरं कर्तुं कल्याणकारिणीनां योजनानां प्रभाविनं क्रियान्वयनं सुनिश्चयं कर्तुं प्रविधिना महत्वपूर्णा भूमिका कृता। असौ अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालयद्वारा अद्य नवदिल्ल्यां आयोजितानां परिष्काराणां द्वादश वर्ष प्रपूर्त्यवसरस्य उपलक्ष्ये मन्यमानं परिष्कारोत्सवं संबोधयन् उक्तवान्। मीरा युवा भारत इतीदं आधिकारिक रूपेण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्यनेन मान्यता प्राप्ता। यतो हि एकस्मिन्नेव सप्ताहे अन्तर्जाल प्रश्नस्य कृते सर्वाधिकानाम् उपयोक्तृणाम् उपाधिं प्राप्तवत्, यत्र प्रश्नानाम् आभासीय रूपेण उत्तरं प्रयच्छन्तः 390,000 अपि अधिकाः प्रतिभागिनः आसन्। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री डॉ मनसुख मांडवीयः अद्य नवदिल्ली नगरे आयोजिते समारोहे सम्मानपत्रम् अवाप्नोत्। गतवर्षे अक्टूबर मासस्य 25 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26,000 प्रश्नस्य इत्यस्य माध्यमेन अभिलेखः प्राप्तः। मनसुख मांडविया इत्यनेन अस्य कृते वर्धापनं प्रदत्तम्। गुजरात आरक्षि विभागेन राज्ये अवैध रूपेण निवसतः बांग्लादेशीय नागरिकान् विरुध्य ऑपरेशन डेल्टा हंट नामना विशेष अभियानम् आरब्धम्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं गत 24 होरासु 24,400 बांग्लादेशीयाः गृहीताः तथा च 280,700 संदिग्ध जनानां विषये अन्वेषणं प्रचलति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य मालवीय नगरे अग्निकाण्डेन आहतान् द्रष्टुं साकेतस्थं निजी चिकित्सालयं गतवती। सा पीडितैः तथा तेषां परिवारजनैश्च सह संवादं कृतवती। प्रत्येकं मृतकस्य परिवाराय 10,00,000 रूप्यकाणां गंभीररूपेण आहतानां 5,00,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह धनस्य घोषणा कृता। बिहार राज्यस्य मुजफ्फरपुर नगरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये भीषणाग्निकाण्डे 3 जनाः मृताः, अनेके च आहताः। एषा घटना गतरात्रौ ब्रह्मपुरा क्षेत्रे अभवत्। गंभीर रोगिणः उपचारार्थं अन्येषु चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की चिट्ठी। और 6:47 पर होगी राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। तीनों ही समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध कराए गए विश्लेषण और एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता। मसौदे पर लोगों से इस महीने की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट में एआई सहायता प्राप्त कार्यों, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सभी अदालती कामकाज को मानव नियंत्रण में रखना अनिवार्य किया गया है। प्रस्तावित मसौदा एआई को निर्णय देने, सजा तय करने, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन करने और कानूनी परिणामों का निर्धारण करने से रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। राज्य में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेन्द्र टंडन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की साझेदारी करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कल गुजरात और दमन दौरे का कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आज आयोजित सुधार उत्सव में उन्होंने ये बात कही। श्री रिजिजू ने कहा कि तकनीक को अपनाने से मंत्रालयों को लाभार्थियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू की है। आयोग ने इसका सफल उपयोग हाल ही में हुई सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में किया है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने बताया कि इसके तहत आवेदन भरते समय उम्मीदवार की जो फोटो अपलोड की जाती है उसका मिलान कर देखा जाता है कि वही अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निलहानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 1982 में हथकड़ी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री निलहानी ने आग ही आग, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश सहित कई प्रसिद्ध फिल्में बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च की गई। फ्लेक्स फ्यूल ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये 20% से लेकर 100% एथेनॉल तक के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की। इस मौके पर श्री पुरी ने फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को देश में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इसका बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने से एथेनॉल आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लैक्स फ्यूल वाहन प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात की निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो

0: सकती है। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत बिजली उत्पादन निगमों की ओर से किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्री नागर ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत तक निर्बाध बिजली पूर्ति करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
1: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें, वहीं उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही उसका उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्य का 80% काम अब तक पूरा हो चुका है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि देशभर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर कुल 855 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। इस दौरान विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन बनाने और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें आवंटित की गई हैं। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर और कोटा सहित 8 शहरों में चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल हो चुका है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। विश्वास से विकास, सेवा से सुशासन नाम का ये जनसंपर्क अभियान 21 जून तक चलेगा। कार्यक्रम की सहसंयोजक अपूर्वा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व राज्यपाल ने अपने संदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत छायादार पौधे लगाने और उनकी उचित देखभाल करने की अपील की है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और नागरिकों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान की शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री लाल शर्मा जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी सहभागिता रहेगी। प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इस मौके पर पाली के जवाई क्षेत्र में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं ब्यावर के टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आज देश में आगमन हो गया है। केरलम से मॉनसून ने प्रवेश किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इससे राजस्थान में भी आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे उदयपुर जिले में दोपहर बाद बरसात हुई। वहीं डूंगरपुर के सांबला में ओले भी गिरे। चूरू जिले के बीनासर, सातड़ा और सहला सहित कई गांवों में तेज अंधड़ के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही को छोड़कर बाकी स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में अगले तीन दिनों तक तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में इन्हें पदस्थ किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पूरे महीने में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर बना रहा, वहीं महीने के आखिरी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों ने जिले वासियों को प्रभावित किया। इसी सिलसिले के साथ जून महीने की भी शुरुआत हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन अभी भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बदलते मौसम के बीच जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और सूचीकरण का काम किया जा रहा है। प्रगणक घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से 33 सवालों के जवाब पूछकर सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक बीते दिनों कोटा आए और उन्होंने जनगणना कार्य की प्रगति के संबंध में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जानकारियां वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही डेटा की गुणवत्ता, सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों भूजल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण को लेकर वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट से की। यह अभियान कल संपन्न होगा। 15 दिन के इस अभियान के दौरान जल संरक्षण और साफ सफाई से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें कलश यात्रा, सरोवर और पीपल पूजन, ग्राम सभाओं का आयोजन, जल संरचनाओं की सफाई, प्रभात फेरियां, साइकिल रैली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 3 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा जिले भर में ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई की गई। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने दिघोद के डूंगरजय स्थित कमल सरोवर में ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ श्रमदान करते हुए घाटों की सफाई की। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिले में 100 से अधिक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जिले की महिला किसान वंदना गौड और किसान राहुल नागर को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगले वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर से नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त तथा कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की मानस गांव, रंगपुर, किशनपुरा, तकिया, ताथेड़, आरामपुरा, खेड़ा रामपुर, भीमपुर, जाखोड़ा, अरंडखेड़ा, अरलिया, जागीर, गंदीफली और गोदलिया हीड़ी ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन पर 18 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों सांगोद स्थित अपने निजी आवास पर ERCP और बिजली विभाग से जुड़े उच्च

0: अधिकारियों और अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रगति, बिजली कनेक्शन और क्षेत्र की विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री ने धुलेट टू लिफ्ट परियोजना से तत्काल कनेक्शन जारी करने को कहा ताकि कनवर क्षेत्र के 14 गांवों को जल्द से जल्द पानी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने देवली लिफ्ट परियोजना से भी शीघ्र पानी देने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मंडीता, कुंदनपुर, विनोद खुर्द और मंडाप गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बीते दिनों युवा आवास प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की। युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार गठित की गई इस कमेटी के साथ कोटा में बन रहे यूथ हॉस्टल के प्रबंधन, रख रखाव सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है, प्रादेशिक समाचार। पहली आज री खास खबरां। सर्वोच्च न्यायालय अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलों केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान सू राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुजर ने उम्मीदवार बनाए गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली माए लॉन्च करी गई और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत माए लगातार बिजली पुगाबा खातर कोशिश कर रही है। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम माए लेवन रो मसौदो जारी करियो। इनमें साफ किनो है कि कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण और एल्गोरिदम फैसला लेबा माथे आधारित नी सकेला। मसौदा माथे लोगानु इन मीनारी 20 तारीख तय सुझाव मांगिया गया है। इन ड्राफ्ट माए एआई सहायता प्राप्त काम, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन री मंजूरी दी गई है। हालांकि इनमें सगड़ा अदालती कामकाज ने मानव नियंत्रण में राखनो जरूरी करियो गयो है। प्रस्तावित मसौदो एआई ने फैसला लेबा, सजा तय करबा, गवाहारी विश्वसनीयता को आंकलन करबा और कानूनी नतीजा तय करबा सू रोके है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 3 सीटा माथे होबा वाला राज्यसभा चुनाव खातर आपरा 2 प्रत्याशियों रो ऐलान करियो है। पार्टी सतीश पूनिया और अलका गुजर ने आपरो उम्मीदवार बनायो है। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज राजस्थान समेत 5 राज्यां खातर आपरा प्रत्याशियों रो नाम ऐलान करियो है। राज्य में 3 सीटा माथे राज्यसभा चुनाव वेला इन खातर 8 जून तय नामांकन दाखिल करिया जा सके है। 18 जून ने वोट पड़ेला और 19 दिन नतीजा ऐलान करिया जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला री कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज री आज नई दिल्ली माए मुलाकात हुई। इन दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल समेत दूजा हल्का माए इमदाद बढ़ाबारी संभावना माथे विचार करियो गयो। पूर्वी हल्कारा सचिव रुद्रेंद्र टंडन मीडिया सु बातचीत माए बताया कि इन बैठक माए ऊर्जा हल्कारी साझेदारी करबा माथे खास रूप चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी रो काल गुजरात और दमन दौरा रो कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कया के शासन व्यवस्था ने चोखो बनाबा और जनहित योजनावा ने चलाबा माए प्रौद्योगिकी महती भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके नई दिल्ली माए आज राख्या सुधार उत्सव माए या बात की गई। श्री यिजुजू कहा कि तकनीक ने

0: मैं लेबा सु मंत्रालय रा लाभार्थिया रा जीवन माए बड़ो बदलाव लियाबा माए इमदाद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया ने और सुरक्षित और साफ गोई बना बाखातर फेंस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली शुरू करी गई है। आयोग इंड्रो सफल इस्तेमाल हाल ही मायवी सिविल सेवा और भारतीय वन सेवारी शुरुआती परीक्षा माय करियो। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार बताया रे इंड्रे तहत आवेदक भर्ती टेम उम्मीदवारी जो फोटो अपलोड करी जावे है उनरो मिलान कर देखो जावे है के उन्हें अभ्यर्थी परीक्षा देबा आयो है। जानिया मानिया फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी आज मुंबई माए देवलोक वह गया। वह 76 बरस रहा। बरस 1982 माए हथकड़ी फिल्मों आपरा कामरी शुरुआत कर बाबाड़ा श्री निहलानी आगिया शोला और शबनम आंखें दिल तेरा दीवाना और तलाश समेत कई नामजोग फिल्मा बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रा अध्यक्ष भी रहा। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च करी गई। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल रा मेल सु चाल सके है। ये 20 लेर 100% एथेनॉल ने ईंधन रा रूप माए काम माए ले सके है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली माए इंड्री लॉन्चिंग करी। राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावारा लगस रहते बिजली उत्पादन निगम रिकानियों करिया गया चोखा प्रदर्शन ने लेर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज जयपुर में प्रेस वार्ता करी। इन दौरान वना प्रदेश में बिजली उत्पादन आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना माते विस्तारों चर्चा करी। श्री नागर किसाना ने दिन माए बिजली मुहैया कराबा खातर आबाद की। ऊर्जा मंत्री कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत तय लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश कर रही है।
2: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें, वहीं उसको उपयोग करें ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही उसका उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश में सरकारी भवना माथे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा बारा तय लगसरो 80% काम हाल तय पूरो वैग्यो है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज न्यारा मंत्रालय और संस्थानारा एहलकाना सागे बैठक करी। श्री जोशी सोशल मीडिया माथे बताया कि देश भर में 53,000 सरकारी भवना माथे कुल 855 मेगावाट बूतारी सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसा चलाबा खातर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जरूरी व्यवस्था पक्की करबारू काम चल रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में इन बाबत बैठक ली। इन दौरान न्यारा न्यारा शहरा में इलेक्ट्रिक बसा खातर डिपो चार्जिंग स्टेशन बनाबा और दूजा कामारी समीक्षा करी गई। बतायो जावे है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान ने 1150 बसा आवंटित करी गई है। ये जयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर अलवर और कोटा समेत 8 शहरा माए चलाई जावेला। इन बसारो ट्रायल वह चुकियो है। इन खातर जरूरी सुविधा बांधे तेजियों विकास काम करियो जारियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार 12 बरस की उपलब्धियां ने जन जन ताई पुगाबा खातर प्रदेश भाजपा रिकानियों राज्यव्यापी अभियान चलायो जावेला। विश्वास सु विकास सेवा सु सुशासन नाम रोयो जनसंपर्क अभियान 21 जून तय चालेला। कार्यक्रम री सह संयोजक अपूर्वा सिंह आकाशवाणी ने बतायो कि इन दौरान न्यारी न्यारी गतिविधियां वेला।

0: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े लोगों पर्यावरण मुजब जीवन शैली बना बारी अरज करी। विश्व पर्यावरण दिवस पहली राज्यपाल आपरा संदेश माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तहत छायादार पौधा लगाबा और वारी चोखी देखभाल कर बारी अरज करी। अठीने पर्यावरण संरक्षण ने जन आंदोलन बनाबा और नागरिका ने पौधा लगाबा खातर जाग जगा बारा लगसू कालू हरियालू राजस्थान 2026 अभियान की शुरूआत वहरी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूर्व इंडी शुरुआत करेला विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान माए होबा वाला इन कार्यक्रम माए जन प्रतिनिधि पढ़निया स्वयंसेवी संस्थावा और आम लोग मौजूद रहेला। प्रदेश भर माए विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके कई कार्यक्रम रखा गया। इन मौके पालीरा जवाई हल्का माए खास स्वच्छता कार्यक्रम चलायो जावेला। इन मौके ब्यावरा टूरिस्ट विलेज देवमाली मा सिंगल यूज प्लास्टिक रे खिलाफ जागरूकता अभियान चलायो जावेला। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज केरलम सो देश माए आग्यो है। भारत रा मौसम विज्ञान महकमो इनरी पुष्टि करी है कि आवता 2-3 दिन माए मानसून आगे बढ़ सके है। इनसो राजस्थान माए भी आंधी बारिश होबारो अंदाजो है। इन बीच राज्य माए आसो नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वियो है। इनसो उदयपुर जिला माए दोपहर पाछे मेह बरसो वठीने डूंगरपुर रा सांबला माए ओला पड़िया। चूरू जिला रा बीनासर सातड़ा और सहला समेत कई गांव माए तेज अंधड़ पाछे चोखो मेह बरसो। मौसम महकमो आज 9 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट बतायो। वठीने जैसलमेर बाड़मेर जालोर और सिरोही ने छोड़कर बाकी ठोड़ा माथे येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप रा पहला संस्करण की शुरूआत आज अहमदाबाद में भी। 5 दिन रा इन आयोजन में देश दुनिया रा करीब 500 एथलीट भाग ले लिया है। बाड़मेर में आज उत्तर पश्चिमी रेलवे रा पहला वाटर रिसाइकलिंग संयंत्र रो उद्घाटन करियो गयो। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक अमिताभ रेलवे स्टेशन माथे इनरी शुरूआत करी। करीब 2.5 करोड़ रूपया री लागत बढ़िया इन कारखाना रेलवे लीलन री धुलाई माए काम माए लियो गयो पानी दुबारा काम माए लियो जा सकेला। और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू। सर्वोच्च न्यायालय अदालत माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानियो मुहैया कराया गया विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान। सतीश पुनिया और अलका गुर्जर ने उम्मीदवार बनायो गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नवी दिल्ली माए लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत ताई लगातार बिजली पुगाबा खातर कोशिश करी है। इंडस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। पेशे कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनणारा सगळा हेतारू श्रोताओने घणे मानसू गुरविंदर बिश्नोई
1: और दिनेश राणे जरा राम राम,
0: राम। दिनेश भाई कई हालचाल है, कई नवी ताजी?
1: गुरविंदर भाई देखो हालचाल बड़ी

0: बिल्कुल आ देखा कि अगर महाराष्ट्र महीने अगर मानसून पूर्ण रूप आ जावे नी
1: हाँ?
0: तो छह हाथ दिन लागे राजस्थान में आउने और अभी देखा कि जो जून रो अंतिम जो सप्ताह है खासतौर माते आप 20-30 जून रा जो दिन है ए मानसून रा बादलिया जो है आवन रा दिन कहलावे हमें जिन मुजब गर्मी पड़ी है तब पड़ियो है लागे कि 2-4 दिन बेगोई आए लोग अगतरे महीने खेती करे
1: हाँ?
0: खासतौर माते जकारे थोड़ो बहुत पाणतरी व्यवस्था वे कटे ट्यूबवेल वे तो वे इन मौसम रे महीने बाजरी री खेती करे और पड़ोदी है या सीमावर्ती क्षेत्र है उठे ये री अच्छी फसल मिले और सरकार हमें और भी करियो है कि भाई जो की MSP है नी
1: हाँ बड़े सा
0: उवे में बढ़ा दी। देखो जब तक देश रो किसान आत्मनिर्भर नहीं बनी जब तक देश विकसित नहीं हुई आ सोच आ अवधारणा आपा में होनी चाहिए।

0: बिल्कुल आगे बात की हो गुरिंद्र भाई, खाद्यान्न है, दाला है, सब्र महीने जी की एमएसपी जी की रेटा है वे धरा बढ़िए और किसान भाई कोशिश आज करनी चाहिए जीव में जून रो महीनो है और जेठ रो महीनो चाल रही तो क्या होता पहला तो अपना बडेरा क्या होता कि पहल पोत्रो बेटोन जेठ रो बूटो तो बाजरी जी की है हड़क जाती और धापा करा देती गाडा भरीजता धान चुन रहा तो हमें जी का किसान भाई खेती बाड़ी काम काज में लाग जानो चाहिए गुरिंद्र भाई हुड़ हपाटा जी का है खेता में लेना चाहिए खेत आपने बढ़िया तैयार करना चाहिए।
1: देखो जेठ खूंटो लागे जल्दी पाके और हमें अगर आप बाजरी री बात करा तो बाजरी रे कई उन्नत किस्म रज का बीज है
0: हाँ।
1: अनुसंधान और रिसर्च बनियोड़ा वह ने भी आप बोपरा सका और कई एड़ा बीज है जका कृषि वैज्ञानिक बनाया है एग्रीकल्चर जकी यूनिवर्सिटी है नी
0: हाँ। पहले आओ पहले पाओ
1: हाँ में पहले आओ पहले पाओ एड़ा बीज है जका 45 दिन में पाके
0: हाँ। मोटी बात है
1: हाँ, तो 45 दिन रे महीने पाके 2-3 बरसात तो मन लागे महीने 1.5 महीने में किसान ने झीली जाई
0: हाँ, वो जैसा
1: तो एड़े में आप एड़ी फसल बावा जके में रिस्क कम हुए एड़ो नहीं कभी आज में ज्यादा दिन री कोई 60 दिन री खेती है कोई 90 दिन री खेती है जितनी उड़ी करा का उतनी रिस्क जो की है वो फैक्टर जो को है वो बढ़ जावे।
0: सही बात की हो साजी का उन्नत किस्म रा बीज है कम समय अवधि रे मैंने जी की पाके कम पानी रे मैंने जी की पाके बेहाका गुरुंद्र भाई बहुत ही बढ़िया जोरदार ऊर्जा और बाद रे महीने तो देखो आप बात करा जी दलहन है मूंग है मोठ है गवार है किसान भाई बढ़िया एक दो बार में बढ़िया जम जा तो आप रेवा भी पैदावार ले कोशिश आज करनी है कि आप उन्नत किस्म रा बीज ले खेती करनी है यूनिक 2-4 बरारा पड़िया कटी मूंग है कटी बाजरी पड़ी है बाईज थे लेगार
1: हुलियोड़ी बाजरी लोग कहीं बीजो बना दे या बीजे में भेड़ कर दे
0: हाँ।
1: देखो के दिनेश भाई के आउनाले लारले जका 10 साल निकलिया है
0: हाँ।
1: में किसान और किसान रे बीज संबंध में बहुत ही अनुसंधान रिसर्च हुयो है और इन रिसर्च मुझे कई देश बहुत आगे हो गया आप अगर जिक्र करा अपने पड़ोसी देश चीन रो
0: हाँ।
1: तो में कई तरह री जकी किस्म काढ़ी है जकी बोनी किस्म आवे
0: हाँ, छोटी किस्म में फट फल लाग
1: जाए तो उड़ी देख में अपने पश्चिमी राजस्थान में जकी खेजड़ी है उए रे महीने भी बोनी किस्म काढ़ी है
0: हाँ।
1: और उए में जिन तरह री हांगरी लागे जिन तरह वो खोखो बने
0: हाँ।
1: चमत्कार लागे कि ये 2-2.5 फुट की खेजड़ी है हांगरिया भरियोड़ी
0: हाँ, मत फल लागे जोरदार
1: तो आउन वाले टाइम में किसान ने टेक्नोलॉजी रो इस्तेमाल करता थका विज्ञान ने स्वीकार करता थका इन तरह रा दरखत लगाना पड़ी जकी हाइट में कम हुए
0: हाँ।
1: और उत्पाद रे मायने ज्यादा वेर आज हम पश्चिमी राजस्थान में देखा नी
0: हाँ।
1: तो भाई देखो के गुंदा है आम ऊंड ला गया कई एड़ी जकी फसल जकेरी कल्पना ही नहीं कर सकता बे हमें राजस्थान में ऊंड लागी तो वो है मैं अगर आप विकसित बीज लेवा ढंगरो बीज लेवा अच्छी फसल लेवा तो किसानी जदी फायदे में है भाई जद किसानी री आय है बा बड़ी

सजना रे साजन फूल गुलाब रो अरे मैं फूलारी बस बस रे बस अरे साजन हमारो काले जो तो मैं साजन रो सास अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा।

0: सही बात है। और आय बडौना जी का विकल्प है, वे अपने तलाशना पड़ेला। गुरुंद्र भाई जी आप बात बताई, दर कथारी बताई, अनारी बता दी, बेरी बता दी, आंवला भी बता दी, सहजन जी का है, इनके साथ साथ औषधि है, पादप है, पौधा है, कई भांत भांतरा जी का हर्बल जी का उद्यान है। वे भी किसान भाई आप रहे बाड़मेर है, पश्चिमी राजस्थान है, क्षेत्र में विकसित कर पड़ा और बहुत मोटे स्तर में काम हरू करण आपकी उपत है, उपज है, उन्हें बढ़ा सके।
1: देखो भाई अट कोई एक मंडी है, उरा कई वीडियो भी आवे किसान भाई ने ठा है, नीमच मंडी है शायद, तो उठे हर तरह रो औषधीय जो को चीज है नी बा बिके। लाल दिना आकड़े रे जो का फूल वेक
0: वो अपन भैंस के वाजे ने
1: हाँ आकड़े रा फूल भेड़ा कर लयो रही बहुत अच्छा भाव मिले। तो देखो आकड़ो बिके है, छाल बिके है, अमर बेल रा जका है बा बिके है, आ दुदुड़ी भले एक बेल वे जकी कहीं के गिलोय है
0: अमर बेल
1: और गिलोय रा छोटा छोटा टुकड़ा बिके और किसान भैया देखो हमें वो टाइम बदल गयो के नींबू है आप रे बढ़िया, नींबू रा भाव कम लागे तो आप नींबू ने काटन हुका दो, हुकड़ा नींबू बिके है, हु केड़ा अनारा छिलका बिके है, हर वो चीज आप सोच ही नहीं सको कि यह बाजार में आन इरा भाव मिल सके, अच्छा भाव मिले, कोई 9000 रुपया कुंटल है, कोई 10000 रुपया कुंटल है। खास तौर माते करेला घना आवे उन टाइम खपत कम हुए, भाव कम हुए तो लोग करेला हुका दो, हुकुड़ा करेला है जका करीब 10-12000 रुपया कुंटल है भाव जावे, जो पश्चिमी राजस्थान में काचर हुए है नी
0: काचर हुका
1: काचर है, मतीरा है, मतीरे बीज है। तो आप अगर थोड़ो सो आत्मक चलान कोई दूजी की तरफ सोचा के भाई इन चीज री फसल लेवा और ओले ओले भाई आज तो मैं अठो उठे मंडी ले जाओ बहुत भारी पड़े, तो 4-5-10 किसान लोग भेड़ा रल और उठे जावे तो वह अच्छा भाव मिले,
0: अच्छा भाव मिले। गुरुंद्र भाई और जो आप बात बताई कि भाई टेक्नोलॉजी ने अपन आगे बढ़ावनी है, तो आजकल देखो मार्केटिंग जी का तरीका है वह भी बदल गया, देखो ऑनलाइन कई मांग आ जावे कि भाई आ मानकने आ चीज है, आ औषधि है, तो वह देखो ऑनलाइन बिक्री हो जा गुरुंद्र भाई और खाते में पैसा भी आ जा। जरूरत इन बात है कि किसान भाई खेती हमें जरूरत के हिसाब नहीं करनी है, जरूरत हो अपने 10 गुना 20 गुना ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करनी है। ज्यू आप कहो कि भाई वह सूखा परान भी आप काम में ले सका, अपने राजस्थान में कई क्षेत्र मैंने जीव नहरी क्षेत्र है तो देखो पानी की भी समुचित व्यवस्था है, तो उठे फूलोरी खेती हो सके।

0: गुलाब रो जैसे फूल रिया प्रकृति ले मा तो आप गुलाब जल भी बना सका देखो
1: किन गुलाब जो की पत्तियां है वह ने हुका सका हा काचर जो हुका वानी जो टमाटर काट काट हुका बे मंडी में लायोड़ा तो मैं तो उठे जका वे चीजा देखी नी तो बड़ो आश्चर्य हो कि मैं ए चीजा तो आपन अटे गांव में फेंक दे यार बे वही चीजा हुकान उन बाजार में बेचे
0: बहुत
1: अच्छा भाव लागे
0: अच्छा भाव लागे
1: तो किसान भैया देखो का मैं टेक्नोलॉजी रो जमानो है जरिए मोबाइल पूरी दुनिया आपरे हाथ में और गांव रे मैंने कई जगह पढ़िया लिखिया है विद्यार्थी है किसान है तो बे सोसाइटी बना सके उन जरिए सोसाइटी में पूरे देश रे मैंने आप रो सैंपल बेच सके सामान बेच सके देश तो देश हमें सरकार आईडी व्यवस्था कर दी कि विदेशा रे मैंने भी आप अपनो सैंपल बेच सका जो मथानिया री मिर्ची है आज की चिल्ली आवे मथानिया चिल्ली जो की है ईरो जो को चिल्ली सॉस है वो दुनिया रे मैंने बिके जीरो जो को है आपने ठहरो मरुभूमि रो इन जीरे रो दानो और जीरे री खुशबू है जो की बहुत अच्छी है और अच्छो बीज है तो इन जीरे री मांग भी पूरी दुनिया में है लसन है तो लसन रो पेस्ट बने अठे जो तुरम बने तो उरी मांग भी पूरी दुनिया में है तो जका पढ़िया लिखिया गांव रा विद्यार्थी है होनार युवा है वे व्यापारिक सोच रखे व्यापारिक दिमाग रखे कि भाई दुनिया में आ चीज कठे बिक सके जकी चीज थाने अटे ज्यादा वेर दुनिया में जटे ज्यादा भाव में बिके हमें उठे पुगौन

0: उठे जाउन रोन वे चीजें तो बहुत खत्म होगी। आप तुरंत मोबाइल के जरिए जा सको।
1: हाँ बिल्कुल सही बात की गुरुंद्र भाई, ए जी की चीजा है आप जी बताइयो तो आने वाले भगत में अपने इन्हीं मार्ग माते चालना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जी को उत्पादन है वो अपने करना पड़ेगा और कठे कठे मार्केटिंग है, मार्केटिंग ने तलाश करता थका अपा सगड़ी जी की चीजा है अपा भेजा करा। देखो कि कोई भी काम काज करे उन मैंने जी का युवा मोटियार है उन्हारो योगदान हो, महिला रो योगदान हुए, घर परिवार जब तक मिलन वो काम नहीं करे खेती बाड़ी रो तब तक जी की सफलता है लाभ है वो नहीं मिल सके। गुरुंद्र भाई आज रो जी को एक खास दिवस भी है कि आक्रमकता रे वास्ते जी का शिकार जी का मासूम बच्चा हो जा उनारो अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है।
0: बिल्कुल साथिया के टाबरा रे वास्ते अंतर्राष्ट्रीय दिवस तरह तरह मनाई जे, वाणे स्वास्थ्य संबंध मनाई जे के भाई जका देश रा टाबर है वे स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे वाणे पेट में कीड़ा नहीं पड़े। इन मुझे पूरी दुनिया जकी आउनाली जकी नस्ल है आउनाली जकी फसल है मिनखारी वे तो टाबर है।
1: सही है सर।
0: और टाबरा रे माथे मासूम टाबरा रे माथे अगर किनी तरह रो कहीं के
1: कोई अत्याचार
0: है कोई दबाव है तो वो दो तरह हुए के भाई कई घर परिवार एड़ा वे जका टाबरा ने बहुत यूं अलग तरह पाले डरान धमकान तो वाणी जकी मानसिक जकी ग्रोथ है वह रुक जावे या टाबरा ने वे समुचित रूप पढ़न रो मौको नहीं दे। अभी है मैं देखी कि टाबरा टाबरा में भेद करे छोरो है तो वे ने अलग जिम्मावेर छोरी है तो वे ने अलग खानो दे। ए भाई पाप री निशानी है।
1: सही अंतर है भेद
0: जिन घर में टाबर टाबर में भेद करे वे ने इनी जमारे रमाइने दुख भोगना पड़ेला एडो मारो माननो है। लड़का लड़की एक समान और टाबरा रे साथे अत्याचार अगर कोई करे इनु मोटो तो कई जुल्म होवे।
1: सही बात है क्यों गुरुंद्र भाई, कोशिश आ राखनी है कि जिको एकाकी पन जिको है टाबर वो उन मायने नहीं होनो चाहिए, गुल मिलनो चाहिए जिन हाथे माता पिता गुल मिल करे हाथे भाई है बहन है या परिवार जी का सदस्य है तो जानने की कोशिश करे और किनी तरह जिको आक्रम जिकी होनी जिकी बात है टाबर में आ नहीं होनी चाहिए। टाबर हमें अपने कन आन बैठे कोई आप दो बात करे काजे जद आपने लागे भाई ओ टाबर जी को है पढ़े की तरफ जा रियो है आप रो जी को विकास है समुचित विकास कर लियो और थोड़ो बहुत अंतर लागे थोड़े अनसुन टाबर रहे गुमसुम रहे तो भी ने अपने जानने की कोशिश करनी है कि भाई इनकी इनकी गड़बड़ है।

0: से ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: आक्रमकता जकी टाबरा रे महीने आवे उगेरो कठिन कठे उगेरे आए पैरो जको परिवेश हुए
2: संगत
1: हाँ परिवेश बहुत निर्भर करे। अबे देखो आज हमें शहरा रे महीने टाबरा रे महीने खुद रे महीने आक्रमकता बढ़ गई। सिर्फ एक ही कारण है कि वो मोबाइल उन मोबाइल री वजह हुए कई चीजा एडी देखे है कि उगेरी प्रवृत्ति जकी है वे आक्रमक हो जाए। वो देखे कि नहीं मैं हो चू मैं क्यों जो कोई होना चाहिए
2: मैं सही हूँ बाकी सब गलत।
1: हाँ तो इन तरह का जका भाव है एक तरह रो विकार है और मान विकार है। बच्चा अगर संयुक्त परिवार में रहे घर परिवार में काका काकी नाना नानी दादा दादी तो में इन तरह हिलमिलन रहे कि वो इन्हें ठाई नहीं पड़े और वो इन पूरे रे पूरे परिवार ने जो को उरो परिवार है चाहे वे रेवे भले ही अलग अलग है रेवे भले ही अलग अलग लेकिन वाणा संबंध अगर मधुर है संबंध अगर अच्छा है हाथे बार त्योहार बेड़ा हुए उठे बैठे तो उन टाबरों जो को जो मानसिक ग्रोथ है वह बहुत ही अच्छी तरह हुए उनमें समाजीकरण की भावना स्वतः ही आ जावे। अर जका एकल खोरिया वे टाबरा ने आप अलग राकन पालो आप रे घर परिवार नहीं मिलाओ हो और बन को नहीं ए हाकरा को नहीं नैने टाबर रे जके दिमाग में घर परिवार मुझे कोई आ भावना गाल दे के आए हाकरा है ए खराब है बस उठे ही वे रो मानसिक विकार शुरू हो जावे। टाबरी परवरिश फूल जो करा नहीं आप
2: समूह हाथ करनी है
1: फूल रे हिसाब उबी ने घर परिवार रे मायने मैं तो देवा जना उरी खुशबू जकी है देश दुनिया तक फैली रहा। मैं देखो दिनेश भाई कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर विष्णोई
2: और दिनेश राणे जाने शेख दे रहा हो
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश कार्यक्रम सीमाड़ेरी गूंज।

0: अरे राम राम नवलाबा, ओ नवलाबा।
1: अरे पुंगी आला आको रे मार रे फाटकू गन पुंगी बजाओ।
0: अरे कई पुंगी पुंगी करो नवलाबा।
1: अरे मारे मारे तो कोई गन पुंगी बजाओ मार कोई कलिंदा राजा करता।
0: अरे
1: अरे मारे भाई कौन पुंगी बार मेल दे
0: ओल क्या कौन जा मैंने
1: ओल क्या है कौन है नेड़ो आ तो बोल।
0: ओ देखो सा
1: ओ ठीक है कमल गल लो।
0: हाँ
1: आज पुंगी ले ना तो कमल नाथ बन को।
0: हाँ नवला बात तुम्हारे नाम इतना बाड़िया है
1: बाड़िया नाम कई नाम बाड़िया था थारू हूँ लाड की तो राखू थारे।
0: हाँ ओ तो है नवला
1: अच्छा लाडू भाई बेगा है लाड कोडू बात हुए
0: हुए नवला समझे
1: नहीं है बात है रे भाई कमल।
0: हाँ।
1: और राव रोकी कोनी कह देगा कह रुद्रा बाजा रुद्मी बाजे
0: बाजे
1: सा। और हूँ तो के थोड़ो डर लागोड़ो है ओका मार कहूँ है को नव तपो गियो नी उन पास धरती तपी तो कहूँ है मैं कोई के हाँ।

0: बादला होया कि देखे न लबा आंधी तूफान।
1: अरे बात हम कुदरत है भाई, जेठ आषाढ़ में दे तो हो ही है, नहीं हो कहीं है जो क्या नहीं क्या भाई थे फागण में हो ही।
0: नहीं नहीं हो ही सर,
1: ये तो रुतरा बाजा है कुदरतरा कह नहीं गिड़का है। देखो कह भाई देखो तपी जल्दी बरी
0: बरी
1: हम समझे नहीं, जे मान लो तपड़ो नहीं होई तो समंदर पानी है जो कह नहीं के कि बाप बनी।
0: हाँ।
1: और बाप बनी जब बस बो पाचो कह नहीं बाप बन बादल बनी बादल बन पचे हवा वहां ने ले नाई
0: ले
1: नाई ना परट बरी बरी जल भाई देखे के मेरी तो बाढ़ मिनक है जो कह पीढ़ी दर पीढ़ी कह जो आया और बड़े रहा तो एक में करते ही गया पर तो कह तो है जो घनो ही है और नहीं वैद भाई कोई आदरी बात है
0: नहीं
1: है समझे नहीं। पर आजकल कह नहीं गिज्ञान काम जोर करियो पहला बता दे कह आंधी तूफान आई करी भाई वो मारी कोई गोबई लिए मेरे कोई हमसार मिल जानी तो मारे कमल हमार पहल के धूल भी आयो कुत्र उड़गी मारे फलकटी उड़गी लूंग हा वो उड़ गोन घेंग उड़ उड़न थे बाढ़ घन जान भेड़ो यो कौन तो मारो कह हारो बैन कौन है जिसको करे
0: पर मैसेज आया ना बोला
1: बाप मारकन मारकन को मंत्र वो कह मारकन वो कौन कुड़ी
0: थाने मोरड़ो फोन देना पड़ी हम की।
1: हाँ बात है देखे भाई कह के भाई देखे हुन्ना जीना कह नहीं की रुन्ना है समझे नहीं है बात वो कह ध्यान रखना पड़े।
0: हाँ ना बोला बाप
1: हमें देखो थे टाबर हूँ था की कह नहीं कोई बात हूँ जुलम करूँ तो क्यों तो आजकल बात नहीं ऊंधी पड़ जा
0: इन्हीं जुलम मने याद आवे आज है आक्रमकता रा शिकार मासूम बच्चा वास्ते अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हर साल 4 जून ने मनाओ नवलबा अन उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक मानसिक और भावनात्मक शोषण और हिंसा झेलने वाला बच्चा रहे दर्द ने स्वीकार करनो
1: और
0: बानी रक्षा
1: देखो टबरिया है देखा कह नहीं कह भाई कोई ऐडा लोग हाथों पड़ जा तो बाने ली जान है जो कह नहीं मारो शोषण करे
0: करे सर
1: के बने ठोके मारे कूटे कह भूखा तिरा रखे कई रखे है जो कर दे
0: करे सर
1: और कई है जो टावरा ने अगुआ कर ले जा और कई है जो कह नहीं मानव तस्करी रा मिनक
0: है सर
1: देखो छोरिया नहीं ले जा छोर नहीं ले जा बचे भाई देखो भूते है बहु में बने ठाई को नहीं हूँ कट जलमियों में कौन मार माँ बाप हाँ कौन मैं कटे रह तो नेड़ा मिन कर हाथ लाग जा तो भाई पज देखो अखबार माते तो आक्रमण ही वह बात तो ठोक ठोक नद गेला कर दे मैं कह नहीं कि मिन का जून मी कह भाई देखो भुगतन बा जून पूरी करे ये बात है हाजी बात है सरकार हर बात कानून जागरूक करे और कह भाई अड़ो जे कटी कोई की नहीं कोई टाबरी ने उठा ले जाओ नालो कोई देख लो कर लो तो उन्हें फट है जो निजत रखो।
0: हाँ
1: तो कहीं है करनी तो गायब हो गया बस भाई माँ बाप ने कह नहीं कि घर रहा कितना खो दे पर अल्लाह दे अल्लाह दे नहीं अल्लाह दे तो नहीं ला दे आज मान लो मारे कोई एड़ो कोई टाबरी हो हाथ में लाग हुए मारे है जो को नींद खराब है तो उन लाल उन्हें घरे है जो को कह नहीं कि बाड़े में है जो को कह के राख दियो और घरों बारे मुंडो काट नहीं दू दाव डांडे रहो कह के हैंग काम करो उनका जून मन तो पाऊ में कह नहीं कह रोटी हाथे है कोई हाड़ी मिल गो तो यारी बात हो जाओ कई है जो पद कई छोरिया उठा ले जा तो बे पद कई है भाई देखे एक बार ने कह भाई जून बा वह जरी वह कह हकू तो सबर है और भी मैं कह नहीं मिनक ने जागरूक रहो सही जाए आप रो पर नहीं मानो कोई री बेटी है तो बा है कोई री बेटो है तो है कह नहीं काल जो है भाई
0: मानवता राखनी।
1: हाँ मानवता राखनी दानवता नहीं बतावनी।
0: हाँ
1: और कह नहीं कुदरत रो निजाम है कमल के बड़े तो हैंगर वाती बड़े ही पड़े तो हैंगर ही पड़े कह नहीं कि भाई तावड़ो पड़े तो हैंगा माती पड़े
0: पड़े सा।
1: कोई कह नहीं रती प्रियु की में कोई है भेदभाव नहीं है
0: नहीं है
1: अरे मिन का झूण में आया तो मिन का झूण मानव बन सको माँ मानव बन सको और दानव बन सको।
0: हाँ ना
1: तो वो बनो अपर हाथ रही है करनी आपो आप रही है। हकरी करो तो हकरी होई, कह नहीं बुरी करो तो बुरी होई, पढ़ाई है कि तावड़ो घणो तपे मंदड़ो करे भाई, हमें तो कह नहीं कि साइड में जोरदार बर जा जेठ तो जड़ो जी कह नहीं थड़गणो कटी आंदो आंधी बतूलिया आया, पर हमें बर जा तो आप कह नहीं है पगे हो जवान खेती।

0: वाह भाई वाह, निहाल कर दिया, बढ़िया गीत होने पानी डो बरसा दे मारा राम जो तो मैं किनू फरियाद करा।
1: सही बात,
0: खैर कोई बात नहीं है, मैं आपने कहे जो कहीं फरियाद करा, कोई नहीं विगतवार कोई जानकारी बताओ कौन जलमियान कौन फोत होया।
1: हाँ सर, विगतवार जानकारी शुरू करू, मैं पहले नाम है अपने अनिल शास्त्री जी, 4 जून 1948 लखनऊ में जन्म लियो है सर, अपने राजनीति के तथा देश दूजा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बेटा है।
0: ओ ठीक ठीक, लाल बहादुर शास्त्री जी का बेटा।
1: हाँ नवलब, 1999 में वाराणसी लोकसभा का सांसद चुनिया नवलब।
0: ओ शास्त्री जी, शास्त्री जी। हाँ भाई,
1: हाँ
0: देश में कहनी के भूखमरी आउनाली ही तो शास्त्री जी एक टाइम रो व्रत करनो कहे और मिनक राखियो वो कहनी की भाई कटी घुटना नहीं टेकना पड़े।
1: हाँ,
0: और बारह है जो कहनी है मोटियार है तो जरूर आप मरीज की चौकी सेवा करी जाए, तो आने कहूँ है जो कह कर
1: मुबारकबाद
0: मुबारकबाद है, बधाई है, कोटि कोटि बधाई है, यही है जो कह शास्त्री जी रा सपूत है, तो बार जरा काम करे मिनका ने है जो की हार दे तो है जो को चौकी जीवारी वह।
1: हाँ,
0: और कहनी की ये तड़ी बधाई है बड़े।
1: आगे ऐसा SP बाला सुब्रमण्यम जी, 4 जून 1946 आंध्र प्रदेश में जन्मे आसा, अपने दिग्गज पार्श्व गायक संगीतकार अभिनेता, 16 भाषाओं में 40,000 ज्यादा गाना गाया।
0: भाषा
1: हाँ नवलब,
0: अच्छा अच्छा,
1: आने नाम में एक ही दिन में सब ज्यादा गाना गाउनो गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम।
0: हाई को कहो,
1: हाई नहीं खाओ,
0: अरे होला भाषा ही कम को नहीं भाई।
1: हाँ
0: देखो इतनी भाषा में कि मिन करे कह नहीं के भाई मगज रे में इतनी भाषा रा शब्द वे आर बाने गावना कोई आतरी बात को नहीं है, तो बड़ा कह नहीं गुणी विद्वान मिनखा, और कह नहीं के भाई जद आरे कंठ में सरस्वती बैठी।
1: हाँ
0: जद है जो जग चावा काम करिया, एक ही दिन में इतना गाना गया कि आऊं बता आज तक ही कोई को गया।
1: कोई नहीं गया, 21 गाना गाया।
0: हो 21, हम बताओ 24 घंटे में 21 गाना गा।
1: हाँ।
0: तो एक गानो गाउन में है जो कई साज बाज बाजे और पाजी कोई तैयारी दूजी करे तो टाइम तो लागे
1: लागे।
0: वाह भाई वाह, बिरला मिन्न खा पर बाते पर धोग दा कोटि कोटि नमन करा मंदरे रा भूल चलावा।
1: हाँ सर,
0: और आरो गायडो कोई मनी आज गीत रो हुना एक दो थे
1: हुना सर।

0: वाह भाई वाह, बात हंसी बात हो, क्या नहीं हिंदी गानो
1: हाँ
0: तो क्या नहीं, कन्नड़ मलयालम तेलुगु तमिल दिखना थी भाषा तो है, महंगा में गया हिंदी में गया,
1: हिंदी में गया
0: बड़ा गया वही पंजाबी में कई कई भाषा को
1: सोलह भाषा है सर।
0: हाँ सोलह भाषा कम को है नहीं। खैर देखो कहरा बिरला मैंने कह रही भारत भूम मत जलमिया और बड़े हमें है जो कौन फोत कौन हो रहा
1: फोत है वहाँ पहला नाम है सर अभिमन्यु अनंत 4 जून 2018 फोत हो आशा प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय कथाकार कवि नाटककार आशा।
0: ओ ठीक ठीक है जी को भाई कथा करता
1: हाँ
0: और बारे में है जी को कह नहीं विदेश में आवता जाओ चौका जग जावा काम करिया भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात है जो विदेशी मिनका तक हुई तो आनी है जो कोटि कोटि नमन है मन डेरा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: आगे ऐसा सुलभा देश पांडे 4 जून 2016 ने फोत हुई सा अपने दिग्गज अभिनेत्री थिएटर निदेशक ही 70 से ज्यादा फिल्म में काम करियो 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित करियो
0: जग जाओ काम करियो सिनेमा में बढ़िया चौका कह नहीं आप कलाकारी अदाकारी बताऊना काम करिया तो नहीं कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मन डेरा भूल चढ़ाऊ बड़े
1: ऐसा आज विगतवार जानकारी ही
0: बहुत बेड़ा नी
1: हाँ
0: वाह भाई की कोनी देखो काया सो जाओ सी राजा रंग फकीर
1: हाँ
0: और क्या नी उदू मार्ग है भाई हो क्या कोनी है जो नी तो कोई रियो नी कोई रह ला और क्या है कि भाई देखो बात आ ध्यान में रखो जीवता हो जिते जुग में एड़ो काम करो मीठी वाणी बोलो चौको व्यवहार करो चौका मिन कर हाथ कह नहीं कि आप रीत नीत रहे तो है बढ़िया है,
1: हाँ
0: है कोई नहीं हमें रीत नीत वाली बात तो है भाई देखे हुड़ अपाड़ तो कमल करा दियो कर दियो और बाढ़ काटो तैयार है बात है पर हमें एक बात है कि हर जान बीज लाना है
1: हाँ, बीज चौका लाना
0: बीज है जो जान कोई बढ़िया कह शंकर बाजरो बीज में मूंग मोटिल गवार हमारा बीज है काकड़िया मतीराला हल देख लानो नकली बीज गिना आवे जो नकली असली परख कर दो यू नहीं कह जो पया दे ठगी बज मत आदि रोवा की उगी को नहीं
1: हाँ।
0: तो हमारे सिरकारू कह नहीं की भाई कोई दुकान है तो उठू लो नहीं है तो जे कोई दूसरी दुकान लाओ तो बिल दे पक्को आऊनो क्या यहाँ को टैक्स लागे कौन जी को हूँ थारी लालच दे तो ये काम
1: हाँ, वो कहते टैक्स कौन लागे
0: नहीं कैसा हूँ दू टैक्स दू और मन बढ़िया सही चीज दो जगह का ही है कोई घटिया गलत चीज नहीं आ रहा
1: है सही है पाजी शिकायत कर सकते
0: हाँ भाई देखा होनो रूपी लाओ तो होनो रूपी नहीं पची और कटी लिया या होने जड़ो तो भाई पजबा कोई उगना है न कोई करना ही फालतू खपत दूजी
1: हाँ
0: ठीक है
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: काम ऐड़ा करो जिगो कही है कि भाई नेसो बनी रखो और नेसो रात काम करो जिन वो काम कही है हो न पको हो और उतावल में क्या को नहीं कि मैं आज जान लेना हूँ और नहीं होना चाहिए लाल मेल दो।

0: ही है।
1: सही बात है।
0: तो हमार तो कई क्या नहीं क्या मुकड़ाई में जाओ पर हमार कोई क्या नहीं है पर कोई घनो है को नहीं उतावलो तो है को नहीं।
1: सही बात है।
0: जो उतावलो दो गोता खावे एडो काम नहीं करना। और मैं देखा भाई के नेचो हंगू मोटो है और मारे नेचो अर्जी सुनियो हुए
1: हो ऐसा
0: बढ़िया अर्जी सुना दे कमल
1: जरूर जरूर सुनो सर।

0: वरतीन।
1: वाह भाई, हमें मारने सोगो चित ठाने आई गो घोड़ो मंदड़ो है वो डबगो और हमें कमला ही है भाई। देखो के थोड़े हाउ सकती हूँ मैं उन्हों क्योंकि तावड़ो घड़ो पड़े तो तावड़ी में कटी है पर बारे में नहीं जानो और जे जाओ तो कहीं एक माँ तो उगड़ो नहीं राखड़ो भूखे पेट नहीं जानो और कह नहीं कि भाई जे बलती बाजती वे तो बारी मुंडो मत काटो एड़ो क्यों कोई ना पर नाव तो करनो कोई बड़े ना रो तो ये बात है बात है जो हाउल ध्यान राखड़ी दूजो तो भाई यू है कि हमें थर कई क्यों कई नहीं क्यों थार बेड़ू करनो मन है कोई
2: हाँ बेड़ू तो कर देना
1: है ओ ठीक ठीक है कौन भल थी है जो मैं आज दिन है कोई आजा कर जा बड़े आज की हतई हटी करान बढ़िया थे यू करो सब्जी दूजी बढ़िया बनाओ ठीक है नी एडी बनाओ जो कही है पारो मन राजी जान खाओते तन राजी जान ठीक है हाँ बनवा दो और हूँ थोड़ी फेर दू माला
2: फेर
1: माला फेरू पे माला फेरिया पे कही है थोड़ो मारो मंदड़ो निर्मल हो जाये और थे दसरो तैयार कर दे और हमें देखे भाई तारे खासा ऊंचा आएगा है नंदा जी पड़गो है प्रोग्राम टाइम ही वह है पूरा तो भाई छेड़ो हमें लेवा ही
2: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

शक्ति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था आर डी बर्मन ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को अनजान का लिखा गीत मेहंदी रंग लाई की फिल्म से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं बड़े दिल वाला फिल्म का गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं संगीत आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना बेजुबान फिल्म का गीत। रविंद्र रावल का लिखा था ये गीत, संगीत राम लक्ष्मण का।

अभी आप सुन रहे थे निकाह फिल्म का गीत, सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था हसरत मोहानी ने, संगीत से संवारा था रवि ने। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में आप सुनते हैं पेंटर बाबू फिल्म का गीत। कतिल सिफाई ने ये गीत लिखा है, उत्तम सिंह जगदीश सिंह ने इसका संगीत दिया है।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं जीना है प्यार में। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, नक्श लयालपुरी के शब्द हैं, संगीत बाशु मोहन ने किया।

0: अभी आप खुद्दार फिल्म का गीत सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ एट 9। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को

0: सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इम्पोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इम्पोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और

0: बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है।

0: सभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation.

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है गुमराह फिल्म से, रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं जुनून फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ों में। गीत की बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना चांदनी फिल्म का गीत सुरेश कुफाड़ेकर और साथियों की आवाज़ों में। भूल आनंद बख्शी की थी संगीत शिव हरि का।

0: अभी आप सुन रही थी लम्हे फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे, शिव हरी का संगीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Soumya Mishra hails from Madhubani, Bihar. She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Soumya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्य मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कोहकर बारी कोयलिया हो रामा.
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा. We will now listen a composition titled कोहकर बारी कोयलिया हो रामा.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: दैट वॉज अ मैथिली कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड बाय सौम्या मिश्रा। शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड बाटे हेरी दिन काटी नूर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन। नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत।

कुमार दास आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाळार रातिटीए पाई घड़ीए पड़ुछी उणा हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा जीवन हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छोड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा।

0: ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा। यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेन्द्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार